0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर आप एक लड़की को हंसा सकते हो, then you can kiss her. This is actually true. I was reading this very interesting piece. एक psychologist ने लिखा था, American psychologist, और उन्होंने लिखा कि हर औरत के लिए in this world, क्योंकि हमारा evolutionary impulse ऐसा है, we look for men who are intelligent. और आप एक intelligent आदमी को कैसे judge करोगे? I mean, you can't spend like 5-6 long debating conversations with a guy to figure out कि वो smart है या नहीं. तो ह्यूमर इज द बेस्ट वे टू एग्जिबिट योर इंटेलिजेंस एज अ मैन. तो हिंदी में दैट्स व्हाई आई गेस दे से कि हंसी तो फंसी, क्योंकि इफ यू कैन मेक हर लाफ यू कैन श्योरली किस हर. एंड मेरे केस में इट्स बीन ट्रू एवरी सिंगल टाइम. आई हैव नेवर किस्ड अ मैन जिसने उससे पहले मुझे हंसाया ना हो. एंड अभी भी व्हेन आई लुक बैक आई एम लाइक ऑल द मेन आई हैव डेटेड एक्सेप्ट वन या टू, बाकी के सब सुपर इंटेलिजेंट मैन. ऑफकोर्स वंस इन अ व्हाइल यू हैव टू डेट टोड्स एंड मेंडक्स एंड ऑल ऑफ दैट, कबूतर्स ऑल्सो. अगर आपने भी ऐसे ही थोड़े से लूजर्स को डेट किया है मेरी तरह एंड यू वॉन्ट टॉक अबाउट इट, वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड व्हाइल यू आर एट इट, अदर दैन इंटेलिजेंस व्हाट एल्स डू यू लुक फॉर इन अ मैन? गो अहेड एंड टेल मी. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची.

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. Na vjet bala burga. Milchi, burga.
1: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में है क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
1: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दब रहा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
1: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा अभी
1: मैं देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल
1: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
2: आराम कर दिया तुम
1: जीना बता रहा यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: इट्स हॉट

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपने अपने बॉयफ्रेंड को उसके चीज केक में कुत्ते के बिस्किट बनाकर दिए एंड आपके बॉयफ्रेंड को पता नहीं चला, आपको शर्म नहीं आई?
3: The secret box.
2: जो भी आपका सीक्रेट कन्फेशन होता है ना, उसे मैं जब रोशिफाई कर देती हूँ तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है. और अगर आप अपनी गंदी गंदी हरकतों को नॉर्मलाइज करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैं हूँ आपकी ब्रोशी, मेरा नाम है मिर्ची रोशी और मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय बेब.
4: हाय,
2: हाउ आर यू?
4: आई एम डूइंग फाइन नाउ.
2: इतने दुखी क्यों साउंड कर रहे हो? यू आर लाइक हाय रोशी, मैं क्या बताऊँ मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, हुआ क्या?
4: एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैंने ये चीज कभी आज तक किसी से कन्फेस नहीं की. तो
2: I totally get it, but you know what? You can like totally tell me your confession, और मैं आपको judge भी नहीं करूँगी and at the end of it आपको roshify भी कर दूँगी, ठीक है?
4: I know. Okay. I just don't want to get judged because मैंने मेरा एक boyfriend था, ex boyfriend actually. तो मैंने उसको, हमने काफी time date किया और फिर मुझे पता चला वो एक number का बीप था और उसने मुझे चीट किया काफी सारी लड़कियों के साथ. तो मैंने उसके ऊपर रिवेंज लेने के लिए उसकी सिस्टर के बॉयफ्रेंड को सिड्यूस किया और हम दोनों ऐसे एक कैजुअल डेट पे भी मिले थे और उसको इवेंचुअली ये चीज पता चली कि उसकी सिस्टर का हार्ट ब्रेक. तो इसलिए
2: मैं आई एम सो स्पीचलेस. ये आपके दिमाग में आया कैसे? कौन सी वाहियात गंदी पिक्चर देख रहे थे आप, जापानीज, कोरियन या फिर यूरोपियन? क्योंकि इंडिया में तो किसी का दिमाग ऐसे नहीं चलता है ब्रो.
4: मैं एक्चुअली उसके सिस्टर को और उसके बॉयफ्रेंड को दोनों को फॉलो करती थी इंस्टाग्राम पे. तो वहां से मुझे लगा कि मुझे इसको ऐसे पेन देना है जिसे याद रखे लाइफ तक.
2: ब्रो देख, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं स्टेट हूँ और सिंगल हूँ, ताकि मुझे कहीं तुम मिल भी गई तो हम कभी डेट नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसा रिवेंज तो मैं हैंडल नहीं कर सकूंगी. ऐसे स्मोकिंग हॉट रिवेंज के लिए आपको रोशिफिकेशन चाहिए. आपकी सोए हुए कॉन्शियस, क्योंकि आप गिल्टी तो फील नहीं कर रहे हो, तो सोए हुए गिल्ट कॉन्शियस के लिए श्योर यू हैव इट.
0: यू've been roshified.
2: बेबी, जो तुमने मेरे को जूसी कन्फेशन बताया है ना, सीरियसली किसी और को मत बताना, ठीक है?
4: नहीं बताऊंगी.
2: सीरियसली मत बताई हो. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई कन्फेशन है, ऐसे वाला, दिस हॉट बर्निंग कन्फेशन, आई डू वॉन्ट टू नो योर स्टोरी. मॉर्निंग ग्लोरी एंड टेल मी अबाउट इट. हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
4: Roshi. Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
5: उनो तो आपने खेली होगी एंड यू नो व्हाट रिवर्स उनो डज आप एक पत्ता फेंकते हो आपका अपोनेंट एक पत्ता फेंकता है एंड बोथ योर मूव्स आर कैंसल्ड आउट बट दैट्स व्हाट हैपेंड इन रियल लाइफ दिस हैपेंड विद अ लैटिन अमेरिकन वुमन उनका नाम काफी कंफ्यूजिंग है बट इफ यू रियली मस्ट नो इट इज यादिरा गुलेर्मो गार्सिया इनके पति को एक ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर दिया विच वॉज एन अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन शी डिडंट रीच आउट टू द पुलिस और एनीथिंग इस अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के गैंग लीडर की माँ को इन्होंने ढूंढा और उसे किडनैप कर दिया शी कॉल द गाय एंड सेड इफ यू सेंड माई पति सेफ आई विल सेंड योर मम्मी सेफ एनीथिंग हैपन्स टू माई पति तेरी माँ के साथ भी वही हश्र होगा दोनों में डायरेक्ट नेगोसिएशन हुई एंड बोथ द मदर एंड द हस्बैंड वर रिलीज्ड अनहार्म्ड दैट इज कॉल्ड बीइंग अ रियल क्वीन और अगर आपने अपने रिलेशनशिप में अपने बंदे के लिए या बंदे के अगेंस्ट आफ्टर ही चीटेड ऑन यू यू डिड समथिंग दैट ड्रास्टिक लाइक रिवर्स यूनो Why don't you hit me up and we'll talk about it. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E and I am the girl in love with love. Find me on the gram or Facebook and while you do that, kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte rao Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मेरा भाई और मैं रिसेंटली ये डिस्कस कर रहे थे कि जब एयर होस्टेसेस आपको बताती हैं कि सीट बेल्ट कैसे पहनना है और आगे के दो द्वार और पीछे के दो द्वार एटसेट्रा एटसेट्रा कब खुलेंगे एग्जिट इमरजेंसी में, तो आई वाज लाइक कि कोई उन्हें देखता नहीं है और उन्हें कितना ख़राब लगता होगा कि वो डेली डे आफ्टर डे आफ्टर डे सेम बातें कर रहे हैं और उन्हें कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो ऐसे करण कितना ख़राब लगता होगा ना उनको, क्योंकि अगर मैं एयर होस्टेस होती तो मुझे भी ख़राब लगता। सो करण बीइंग करण, अब क्योंकि वो भी एक बहुत ही सेंसिटिव इंडिविजुअल है, ही सेड कि रोशी अगली बार हम फ्लाइट लेंगे ना तो मैं भी एयर होस्टेस को फुल ध्यान दूंगा। सो अब हमने फ्लाइट ली, उसने एयर होस्टेस को बहुत ध्यान दिया, वो मतलब गौर से देख रहा है एयर होस्टेस को। एयर होस्टेस को लगा कि करण उसे इसलिए ध्यान से देख रहा है बिकॉज करण को एयर होस्टेस पसंद आ गई। अब एयर होस्टेस वापस करण को द लुक दे रही है, उसे एक्स्ट्रा ग्लासेस ऑफ पानी दे रही है, एक सैंडविच पकड़ाने के बाद कहती है सर वुड यू लाइक सम मोर सैंडविचेस, और करण हमारा डोडो है। करण और एक मेंढक में ज्यादा फर्क नहीं है व्हेन इट कम्स टू इमोशनल एवोल्यूशन। सो ही इज लुकिंग एट मी एंड सेइंग ये मुझे ज्यादा खाने को क्यों दे रही है, क्या मैं मैलनरिश्ड लग रहा हूँ। आई वॉज लाइक तुझ पे लाइन मारी है बट इट्स पॉइंटलेस, तेरा कुछ नहीं हो सकता। बट यू नो व्हाट आई डिस्कवर्ड आउट ऑफ दिस एंटायर इंसिडेंट, कि अगर आप किसी को बहुत अटेंशन दे दो ना, अपनी 100% अटेंशन, तो वो इंसान जो भी होगा जैसा भी होगा जिस रिलेशनशिप में होगा उसका थोड़ी देर के लिए ही सही आप पे दिल जरूर आएगा। इसे ट्राई करके देखो, टेल मी इफ इट वर्क्स फॉर यू एंड देन आई विल पास ऑन अ थैंक यू टू करण, ठीक है। एंड टू डू दैट यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो नाउ गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ये जो बारिश सीन्स हो रहे हैं ना हमारी जिंदगी में, दैट इज प्रॉम्प्टिंग मी टू थिंक अबाउट ओनली एंड ओनली लव. बिकॉज ऑफ विच आई एम आस्किंग यू कि आपकी कभी जिंदगी में ऐसे लव मैरिज टाइप सिचुएशन हुई है? अगर हाँ, हिट मी अप विद योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी इंस्टा पर या एफ बी पर. लेट्स गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड व्हाइल यू फाइंड मी, मुझे अक्षय मैक्सिमस ने अपना नंबर भेजा. नाउ लेट्स फिगर आउट व्हाट इज हिज लव स्टोरी. हेलो.
3: Yeah, it's Roshi, right?
2: Yes, it is. Hello, Akshay Maximus.
3: Oh my God.
2: How are you?
3: I was not expecting this call.
2: Shut up.
3: I have given no number, but I was not expecting you to call me. Oh my God, nice. How are you?
2: I'm very good. How are you?
3: I'm good as well.
2: Where am I talking to you from? What part of the world are you in?
3: I'm from Maharashtra.
2: Okay.
3: From Pune only.
2: Oh, nice. तो आपका लव मैरिज हो चुका है या आपका लव चल रहा है या मैरिज होने वाला है? व्हाट्स द स्टोरी?
3: हो गया वो खत्म, टाटा बाय बाय. मैरिज हो गया.
2: मैरिज हो गया, टाटा बाय बाय. लेकिन मैरिज अभी एग्जिस्ट कर रहा है या मैरिज को भी टाटा बाय बाय बोल
3: दिया? हां हां भाई, कैसे कैसे 8 साल का रिलेशन था यार, हो गया एग्जिस्ट कर रहा है.
2: व्हाट्स द स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी? वाओ, कांग्रेचुलेशंस.
3: कॉलेज रोमांस.
2: अच्छा ठीक है, अब प्रॉपरली बता कि क्या हुआ तुम्हारी लव स्टोरी में.
3: तो ऑब्वियसली माई गर्ल वॉज इन जूनियर फॉर मी. हम कॉलेज में थे, मैं साइंस में था, ये आर्ट्स में, नहीं सॉरी कॉमर्स में थी. तो ये पार्किंग में बैठे रहते थे, टाइम पास करते रहते थे. मैं एज यूजुअल दोपहर का कॉलेज होता था, मस्त ऐसे गाड़ी पे आता था शाइनिंग वाइनिंग मार के. तो क्या वैसे आंखों आंखों में प्यार हुआ. फिर कॉलेज में थोड़े झगड़े हुए, पार्किंग में मारामारी हुई लड़की के ऊपर से.
2: Are you serious? This is so filmy.
3: Yeah, exactly. फिर बंदी को सामने रख के ऐसे कबूल किया गया, तेरे को कौन पसंद है, ये लड़का या ये.
2: Shut up.
3: भाई तब से फिर बंदी अपनी हुई है, तो अभी तक अपनी हुई है.
2: Touch wood.
3: हाँ, last year फिर हमने घर पे बात वगैरह चालू किया कि शादी करते हैं, हो गया रिलेशन को एक 7 साल हो गया, 7-8 साल हो गया, तो अभी आगे का स्टेप कर लेते हैं. शी इज वर्किंग, आई वॉज वर्किंग, सब अच्छे से चल रहा था. फिर क्या थोड़ा सा वो कास्ट इशू बीच में आता है, तो एज यूजुअल वो आया. फिर फाइनली टचवुड पापा वाज देयर. फिर उन्होंने सब बोला ठीक है, लड़की के घर वाले नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, लड़की तो आ रही है ना, बोले यहाँ पे भी बंदी ने साथ दे दिया. फिर मेरे पापा ने शादी कर दी मेरी, फिर खत्म. फिर अभी क्या पूना में प्रॉपर सेटल्ड है. वो अभी ऑफिस गई है, मेरा वर्क फ्रॉम होम है.
2: अच्छा, बट टेल मी समथिंग, तो उसके पेरेंट्स, अब तेरी शादी को 1 साल हो गया, उसके पेरेंट्स हैव दे काइंड ऑफ कम बैक एंड अभी बात नहीं?
3: हाँ, दूसरे दिन ही पलट गए उसके पापा. 1 महीने में घर में आके खाना वाना खा के कर दिए. मैं उसको टॉन्ट मार दू, तेरे पप्पा को शादी का खर्चा नहीं उठाना था, इसलिए.
2: पता है मैं एक नॉर्मल कॉल में ऐसा नहीं करती हूँ, बट आई एम गोना डू दिस.
0: You've been roshified.
2: Oh my God, I love your love story. This is so cool. It was amazing talking to you, Akshay Maximus. And when your wife comes back home, उसको मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी हगी पुची, everything, the works there.
3: Yeah, sure.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi. My name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeeturaj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batlow, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you. कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें सुनाती हूँ जिन्हें मुझे लगता है वो मेरे पोटेंशियल लवर्स हो सकते हैं, एंड इफ दे डोंट गेट एक्साइटेड विद दिस स्टोरी देन आई नो दैट दे आर नॉट फॉर मी। ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है, एक सरियलिस्ट पेंटर की जिनका नाम है सैल्वाडोर डाली। ये एक स्पैनिश आर्टिस्ट हैं, थे एक्चुअली, ही पास्ड अवे ऑन द 23rd January 1989। तो अब आपको टाइम पीरियड भी समझ आ गया ये कब हो रहा था। उस समय सैल्वाडोर के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो एक पोएट और एक आर्टिस्ट भी थे, इनका नाम लॉर्का था। और लॉर्का अपनी वाइफ और बेटे के साथ सैल्वाडोर डाली के साथ समर वेकेशन स्पेंड करने उनके स्पैनिश घर में आए। अब 2 महीने के अंदर अंदर सैल्वाडोर को लॉर्का की बीवी गाला से बेहद मोहब्बत हो गई। ये बात उन्होंने गाला से उन 2 महीने में तो नहीं कही, लेकिन व्हेन दे वर ऑल लीविंग अपने घर वापस जाने के लिए, तो गाला पूरे घर में डाली को ढूंढती रही और वो उन्हें नहीं मिले। फाइनली शी वेंट लुकिंग फॉर हिम इन द स्टूडियो जहां वो पेंटिंग करते थे, और वहां स्टूडियो के कोने में बिल्कुल अपने चेहरे को दीवार की तरफ किए वो एक चेयर पर बैठे थे। ही हैड पेंटेड हिमसेल्फ इंटायरली ब्लू और उनके कान में एक मुरझाया हुआ फूल था। तो गाला ने जब उन्हें देखकर ये पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो सैल्वाडोर, हम लोग जाने वाले हैं। ही लुक्ड इट होर मुड़कर एंड सेड कि अगर तू मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मेरी हालत आज भी ऐसी है और जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी। तो अगर सच में तू मुझे खुश देखना चाहती है और कहीं तेरे दिल में मेरे लिए प्यार है तो प्लीज रुक जा। एंड गाला ने उसी वक्त जाकर लॉर्का से कहा कि यार आई नो कि मैं तुम्हारे बेटे की माँ हूँ एंड आई लव आवर चाइल्ड, लेकिन मैं डाली को इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं ये सब छोड़ दूँ। एंड इवेंचुअली गाला एंड डाली बिकेम लवर्स फॉर लाइफ। इनफैक्ट गाला जब पास्ट अवे, क्योंकि वो डाली से काफ़ी बड़ी थी, तो वो सैल्वाडोर डाली की बाहों में ही मरी थी। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप एक ऐसी लव स्टोरी जानते हो विच इज़ एज ब्यूटिफुल एज दिस वन। अगर हाँ, देन हिट मी अप विद योर नंबर एंड आई विल कॉल यू राइट अवे। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाटएवर यू डू, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि अगर तुम चले जाओगे तो आज भी ऐसी हूँ, जिंदगी भर ऐसी रहूंगी, उदास और अकेली तुम्हारे बिना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: बंदा आपकी दूसरी डेट पर आपसे कॉन्वर्सेशन कर रहा है लेकिन आपसे बात करते करते उसके हाथ उसके पॉकेट में चले जाते हैं एंड दैट काइंड ऑफ मींस कि वो अब आपसे कॉन्वर्सेशन तो कर रहा है लेकिन उसका माइंड कहीं और चला गया है. बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के हिसाब से जब कोई इंसान इट कुड बी अ गर्ल और अ गाय आपके सामने अपने आर्म्स फोल्ड करते हैं अक्रॉस देयर चेस्ट या फिर अपने हाथों को पॉकेट्स में डालते हैं इसका ये मतलब होता है दैट वो आपसे क्लोज्ड ऑफ है दूरी बनाकर रहना चाहते हैं. और अगर ऐसे इंसान को आपको लग रहा है यू गोइंग टू टेक देम टू द बेडरूम यू विल रियली हैव टू यूज अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स. लेकिन यू नो व्हाट, मेरी बेस्टी को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं बिकॉज उसके लिए ये एक चैलेंज है कैसे एक क्लोज्ड इंसान को एक खिला हुआ कमल बना दे. दैट जस्ट साउंड्स सो रॉन्ग. अगर आपने भी अपनी डेट पर किसी को ऐसे क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज यूज करते हुए देखा है एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर बिकॉज माई बॉडी लैंग्वेज फॉर यू विल Never be closed. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, baby. Hit me up. Do what you're so good at doing. लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची. It's hot.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपने अपने बॉयफ्रेंड को उसके चीज केक में कुत्ते के बिस्किट बनाकर दिए एंड आपके बॉयफ्रेंड को पता नहीं चला, आपको शर्म नहीं आई?
3: The secret box.
2: जो भी आपका सीक्रेट कन्फेशन होता है ना, उसे मैं जब रोशिफाई कर देती हूँ तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है. और अगर आप अपनी गंदी गंदी हरकतों को नॉर्मलाइज करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैं हूँ आपकी ब्रोशी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी और मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय बेब.
4: हाय,
2: हाउ आर यू?
4: I'm doing fine now.
2: इतने दुखी क्यों साउंड कर रहे हो? You are like, hi Roshi, मैं क्या बताऊँ मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, हुआ क्या?
4: Actually, मैं बहुत nervous हूँ क्योंकि मैंने ये चीज कभी आज तक किसी से confess नहीं की, तो
2: I totally get it. But you know what? You can like totally tell me your confession और मैं आपको judge भी नहीं करूँगी and at the end of it आपको roshify भी कर दूँगी, ठीक है?
4: I know. Okay. I just don't want to get judged because मैंने मेरा एक boyfriend था, ex-boyfriend actually. So मैंने उसको, हमने काफी time date किया और फिर मुझे पता चला वो एक number का beep था और उसने मुझे cheat किया काफी सारी लड़कियों के साथ. तो मैंने उसके ऊपर revenge लेने के लिए उसकी sister के boyfriend को seduce किया और हम दोनों ऐसे एक casual date पे भी मिले थे.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय, माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने। वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ये एक ऐसा फ्रूट है जिसकी सिर्फ शेप ही सजेस्टिव नहीं है, ये फ्रूट इटसेल्फ आपकी बहुत मदद कर सकता है, स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप में पैशन की कमी है. इंसिडेंटली मेरी ज़िंदगी में आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में पैशन है ही नहीं. केला खा लो आप एक, और वैसे भी ये बहुत ही सस्ता फ्रूट है. आई टेल यू व्हाई, क्योंकि बनाना में ना बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे केमिकल्स भी होते हैं जो आपके मूड को लिफ्ट कर सकते हैं. इट कैन मेक यू मोर कॉन्फिडेंट, और आपके अंदर जो एनर्जी बूस्टिंग हॉर्मोन्स होते हैं उसे भी हाई कर देता है. बेसिकली ऑल यू नीड टू डू इज़ ईट अ बनाना, और उसके बाद All you have to do is eat a banana and then love banana. That makes no sense. Just eat a banana. It's really good for your relationship. And uske baad bhi agar aapko tips and tricks ki zarurat hai, why don't you hit me up Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. Achha, aur agar aapko banana pasand hai ya nahi, doesn't matter. Kyunki jiske paas love hai, uske paas sab hai. And I love you loads.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: से करेंगे सबका स्वागत,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट। जो हाँ

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Cadence, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

कौन सा वाला डायलॉग मारूं आज, पुष्पा आई हेट टीयर्स पुष्पा, या फिर मोगैम्बो खुश हुआ, या फिर ये वाला बोलूं मेरे पास माँ है, या फिर आज खुश तो बहुत होगे तुम। तो आज ना उन मूवीज के आइकॉनिक डायलॉग जो जब बड़े पर्दे पे देखे गए तो पूरे इंडिया ने सदियों तक रिपीट किए। सो इन आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां मैं लेकर के आई हूँ। ये डायलॉग्स कैसे लिखे गए, कब लिखे गए, किसने लिखे एंड व्हाट वाज द सिचुएशन जिनमें इनको लिखा गया। अब जैसे कि पुष्पा आई हेट टीयर्स, इसके पीछे की कहानी क्या है बताऊंगी। गाने सुन करके वापस आओ। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1972 मूवी का नाम अमर प्रेम, मूवी के हीरो राजेश खन्ना, मूवी की हीरोइन शर्मिला टैगोर। और इस मूवी में राजेश खन्ना की जुबान से निकलता है, पुष्पा आई हेट टियर्स पुष्पा, एक ऐसा डायलॉग जो आज भी तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मारते हो या फिर वाइफ को मारते हो या दोस्तों को एक ना एक बार तो बोल के जरूर दिखाते हो। तुम्हें पता है कहानी इस पूरे डायलॉग की? सो ये जो चार अल्फाज थे, पुष्पा आई हेट टियर्स पुष्पा, ये एक्चुअली में कभी एक सेपरेट डायलॉग था ही नहीं। ये लाइन एक बहुत ही लंबे डायलॉग का पार्ट थी, लेकिन सिर्फ एक इंसान ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ इन चार अल्फाजों में पोटेंशियल देखा, और वो थे मूवी के डायरेक्टर शक्ति सामंत। उन्होंने इस डायलॉग को काटा और एक अलग से शॉट लिया राजेश खन्ना साहब का, एकदम उनके ट्रेडमार्क स्टाइल में। और फिर क्या था, ये चार शब्द पूरी इंडिया में क्रांति ले आए। रिलीज होने के जस्ट नेक्स्ट डे हर कोई ये डायलॉग मारते हुए सुनाई दे रहा था। पुरानी जीन्स पर दिस इज मी श्रेया। अगला कौन सा डायलॉग होगा बताऊंगी वापस आऊंगी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: मैंने।
1: ये एक ऐसा डायलॉग है जो तब भी चलता था और आज भी चलता है, कितने आदमी थे। पुरानी जीन्स पर आज बात हो रही है आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियों की। सो शोले फिल्म का ये तीन वर्ड का डायलॉग कितने आदमी थे आज भी हमें जोक्स में मिल जाएगा। तुमने कभी ना कभी अपने कलीग्स पे मारा होगा, कभी फैमिली में मारा होगा। आपको पता है अमजद खान जी पे पिक्चराइज्ड इस एक डायलॉग के पीछे कितने रीटेक्स हुए थे? नहीं पता ना, इसके पीछे की कहानी बताऊंगी। लेकिन अभी नहीं, आपको मुझे ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि तब मुझे पता होता है आप इधर उधर कहीं नहीं हिलने वाले हो। तो वापस आओ, विल लेट यू नो द एंटायर स्टोरी। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Oh, hey then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओह ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

पूरे 40 टेक्स लगे थे इस 3 वर्ड के डायलॉग को पिक्चराइज होने में। हाँ जी, तो आज बात हो रही है फिल्मों के आइकॉनिक डायलॉग्स की। कितने आदमी थे, डू आई नीड टू टेल यू कि ऑफकोर्स शोले फिल्म का डायलॉग था, अमजद खान पे पिक्चराइज था। फिल्म के डायलॉग्स लिखने वाले सलीम खान और जावेद अख्तर, फिल्म को बनाने वाले रमेश सिप्पी, ये पिक्चराइज होना था अमजद खान पे। अब इस एक डायलॉग में अमजद खान की आंखों में सांभा की इंसल्ट और डर दोनों को एक साथ आना था। अमजद खान ने 40 रीटेक्स दिए हैं और तब जाकर के सलीम जावेद को और रमेश सिप्पी साहब को उनके एक्सप्रेशंस पसंद आए थे। पुरानी जीन्स पर आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां विद मी श्रेया। तो बस कहीं भी मत जा।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: मैंने

उस जमाने की फिल्मों के आइकॉनिक डायलॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो उस जमाने से लेकर के इस जमाने तक रिपीट किए जाते हैं। हम सब ने कभी ना कभी अपने बॉस को चढ़ाने के लिए, कभी अपने दोस्त को चढ़ाने के लिए, कभी अपने भाई बहनों को चढ़ाने के लिए जरूर बोला है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। सो दीवार फिल्म का ये जो डायलॉग था, ये अमिताभ बच्चन जी के लिए ही लिखा गया था। ये डायलॉग एक मंदिर में शूट होना था। जब अमित जी ने इस डायलॉग को पढ़ा, उन्होंने इसको शूट करने से पहले एक शर्त रखी। वो शर्त बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिसको यश चोपड़ा साहब मानना नहीं चाहते थे, पर क्योंकि अमित जी जिद पे अड़ गए थे तो उनको माननी पड़ी। बताऊंगी इस एक्सक्लूसिव कंडीशन के बारे में, लेकिन तुम्हें तो पता ही है वो जो मैं करती हूँ, कुछ गानों के उस पार, सो दैट यू डोंट गो एनीवेयर एल्स। पुरानी जींस पर मैं हूँ श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अमिताभ बच्चन जी ने जब ये डायलॉग पढ़ा, उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे आइकॉनिक डायलॉग हो सकता है। उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये एक डायलॉग उनको ऑडियंस के दिल में जगह दिला सकता है। कैरेक्टर का नाम विजय, सीन शिव जी का मंदिर, डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब, एन एक्टर अमिताभ बच्चन, डायलॉग आज खुश तो बहुत होगे तुम। जब अमित जी ने इस डायलॉग को पढ़ा अपनी स्क्रिप्ट में, वो इस डायलॉग से बहुत इम्प्रेस हुए। इसको शूट करने के लिए उन्होंने यश चोपड़ा साहब के सामने एक कंडीशन रखी। उन्होंने कहा कि ये बीच रात में शूट होगा और क्रू का कोई भी मेंबर इस सीन को शूट करने के लिए वहां नहीं होगा, होंगे तो सिर्फ अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा साहब। 15 रीटेक्स लगे जब अमित जी ने खुद के इस डायलॉग की पिक्चराइजेशन को अप्रूव किया। उन्हें ये पता था कि आज तक किसी भी फिल्म में किसी भी एक्टर ने ऊपर वाले को चैलेंज करते हुए कोई डायलॉग नहीं बोला था। ही न्यू इट वॉज गोइंग टू बी ह्यूज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां चलती रहेंगी। तो बस गाने सुनकर के फौरन वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: One,

अच्छा, जब आइकॉनिक डायलॉग्स की बात ही हो रही है फिल्मों के, तो रेट्रो फिल्मों की बातें तो हो ही रही हैं। क्यों ना एक ऐसे आइकॉनिक डायलॉग की बात करें जो कि एक 90s की फिल्म का था, 1994 में आई अंदाज अपना अपना। उसका एक डायलॉग इतना फेमस हुआ कि लोग आज भी उसे रिपीट करते हैं, तेजा मैं हूँ। ये डायलॉग निकला था परेश रावल जी के मुंह से। आपको पता है अंदाज अपना अपना की कोई भी बाउंड स्क्रिप्ट नहीं थी, एज इन एक एक डायलॉग एक एक लाइन नहीं लिखी गई थी। इनफैक्ट एक्टर्स जब एक्टिंग करते थे ना, तो कई बार उस सीन को, उस डायलॉग को इम्प्रोवाइज कर देते थे। और ये वाली जो लाइन थी, तेजा मैं हूँ, ये परेश रावल ने इस सीन को शूट करते करते ऐसे ही निकाल दिया था। फिर क्या, ये 90s की सबसे पॉपुलर फिल्म बनी, जो आज भी अगर किसी चैनल पे आती है तो हम लोग बिना देखे नहीं उठ पाते। पुरानी जीन्स पर आज ऐसे ही डायलॉग्स की बातें विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर मिर्ची साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स उनका प्यार उनका गुस्सा वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batlow, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

जमाने की फिल्मों के ऐसे आइकॉनिक डायलॉग्स जो इस जमाने तक चलते हैं। तुमने भी कभी ना कभी किसी ना किसी से तो ये जरूर कहा होगा, मोगैम्बो खुश हुआ। फिल्म का नाम मिस्टर इंडिया। ये डायलॉग लिखने वाले जावेद अख्तर साहब, फिल्म को डायरेक्ट करने वाले शेखर कपूर, और ये डायलॉग जिन पे पिक्चराइज था अमरीश पुरी यानी मोगैम्बो। अच्छा, शेखर कपूर इस फिल्म में हमेशा मोगैम्बो के कैरेक्टर को लेकर के ना काफी डाउटफुल रहते थे। जब जावेद अख्तर साहब ने ये डायलॉग लिखा मोगैम्बो खुश हुआ, तो वो शेखर कपूर के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें ये डायलॉग कैसा लगा। शेखर कपूर को ये डायलॉग कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्होंने जावेद साहब से कहा कि मुझे इसमें कोई डेप्थ नहीं लग रही, बहुत ही सिंपल प्लेन है कि हाँ मोगैम्बो खुश हुआ। उसके बाद जावेद साहब ने शेखर कपूर से क्या कहा, विच मेड हिम कीप दिस डायलॉग इन द फिल्म, अभी बताऊंगी। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी के हीरो अनिल कपूर, लेकिन ज्यादा पॉपुलर हो गए अमरीश पुरी साहब, क्योंकि डायलॉग जो उन्होंने बोला था वो बन गया था आइकॉनिक डायलॉग। इंडिया का हर बंदा आज भी ये डायलॉग बोलता है, मोगैम्बो खुश हुआ। मिस्टर इंडिया का ये डायलॉग लिखने वाले थे जावेद अख्तर साहब। मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे शेखर कपूर। शेखर कपूर इस डायलॉग से कुछ खास खुश नहीं थे, वो तो इसे रखना भी नहीं चाहते थे। जावेद अख्तर साहब गए और शेखर कपूर को ये डायलॉग बोल के दिखाया कि शेखर तुम्हें ये डायलॉग कैसा लगता है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इस डायलॉग में मजा ही नहीं आया, ये तो आप इमोशन बोल दे रहे हो, क्या मोगैम्बो खुश हुआ जैसे कि शेखर कपूर खुश हुआ। फिर पता है जावेद साहब ने क्या कहा कि जब भी कपिल देव ग्राउंड पे छक्का मारेगा तो पब्लिक चिल्लाएगी मोगैम्बो खुश हुआ। जब भी कोई तीन पत्ती खेलेगा और उसके तीन इक्के आएंगे तो वो इंसान खुश होके कहेगा मोगैम्बो खुश हुआ। शेखर कपूर को ये बात समझ में आई, फिर इस डायलॉग की डिलीवरी को अमरीश पुरी साहब तो कहां से कहां ले गए। एंड दैट्स हाउ दिस बिकेम एन आइकॉनिक डायलॉग। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की और भी बातें और भी गानों के साथ, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर के सलीम साहब, जावेद साहब, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास गए और सबने मना कर दिया था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज आइकॉनिक डायलॉग्स की बात हो रही है। दीवार की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें था मेरे पास माँ है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट लेकर के ना वो लोग बहुत सारे डायरेक्टर्स के पास गए, प्रोड्यूसर्स के पास गए, लेकिन उस टाइम पे सलीम जावेद साहब एक ह्यूज अमाउंट कोट कर रहे थे, क्योंकि उनकी जंजीर ऑलरेडी हिट हो गई थी, शोले ऑलरेडी हिट हो गई थी फॉर द स्क्रिप्ट ऑफ दीवार। सो दीवार की स्क्रिप्ट के लिए वो 8 लाख रुपए मांग रहे थे। कहते हैं गुलशन राय, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो सबसे ज्यादा अगर उन्हें कुछ टच किया वो था मेरे पास माँ है। ये लाइन पढ़ते ही वो रोने लगे। अच्छा, जावेद साहब और सलीम साहब की ये जो जर्नी रही है ना, उस पे एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री आई है ऑन नेटफ्लिक्स, विच इज कॉल्ड एंग्री यंग मैन सीजन 1। उसपे जावेद साहब ने ना इस डायलॉग के पीछे की एक बहुत ही वैलिड, बहुत ही लॉजिकल कहानी बताई है। क्या है वो, अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

तो जावेद साहब का मानना था कि भाई अच्छाई तब तक नहीं पता चलती जब तक उसके सामने बुराई ना हो। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और बात कर रहे हैं आइकॉनिक डायलॉग्स की ऑफ हिंदी सिनेमा। उसमें एक इम्पोर्टेंट डायलॉग जो हमेशा के लिए दर्ज है, हम कभी ना कभी जरूर मारते हैं, और वो है मेरे पास माँ है। दीवार फिल्म के लिए जब जावेद साहब ने ये डायलॉग लिखा था ना, तो ही सेड कि ये स्टैंड अलोन डायलॉग नहीं हो सकता था। इस डायलॉग का जो शशि कपूर ने कहा निरूपा रॉय के लिए अमिताभ बच्चन से, ये तब तक वैल्यू नहीं करता जब तक अमिताभ बच्चन इससे पहले तक अपने मटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं गिनवाते। तो इसीलिए जावेद साहब ने पहले अमिताभ बच्चन को डायलॉग दिए, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। और तब जब ये डायलॉग आता है कि मेरे पास माँ है, दैट वॉज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां चलती रहेंगी। तो बस गाने सुनकर के फौरन वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot।
2: Hi, my name is Peter Parker।
3: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड से किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया एंड पीटर पार्कर यानी टॉम हॉलैंड, इन दिस फिल्म इट्स अ लिटिल डिफरेंट। इन फैक्ट आई कैन गो अहेड एंड टेल यू कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतू राज ने, वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mirchi New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ। और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Tad Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein ja kar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kahi chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahi bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kahi aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज के पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है Jeeturaj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज
0: साथ Jeeturaj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतूराज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी। आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batlow, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने, वो क्या है। ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। जेंजी ने जेलसी को हैंडल करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है, आइए उनके पर्सपेक्टिव को समझते हैं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
2: सिस्टर, कई बार बहुत सारे जेंजी या जेन अल्फा इन लोगों से जब बात होती तो कई चीजें वो ऐसे कहते हैं, वो ऐसे वाक्या कहते हैं जो आपको लगता है हम गलत तो नहीं है गई। जैसे बहुत सिंपल सा एक डिबेट है कि भैया हम कई बार मजाक में भी कहते हैं कि शायद हमारी आखिरी जनरेशन है जिन्होंने अपने पेरेंट्स की भी सुनी और अपने बच्चों की भी सुन रहे हैं। और इस बात पे जेन जी जो होते हैं, जेन अल्फा होते हैं, वो कहते हैं भाई हम अपने पेरेंट्स की बात इसलिए नहीं सुनते क्योंकि उसमें लॉजिक नहीं, हम लॉजिक ढूंढते हैं। तो अगर हमें बोला जाता है तो पहले हम उसमें लॉजिक जाते हैं। आप अपने पेरेंट्स से डरते थे इसलिए आप वो काम करते हैं जो आपके पेरेंट्स बोलते थे।

0: उस समय ये कॉन्वर्सेशन को किधर लिया जाए?
1: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों हो सकता है, कईयों ने डर से भी किया होगा, कईयों ने रिस्पेक्ट से भी किया होगा। हमें ट्रस्ट था कि शायद हमारे पेरेंट्स जो कह रहे हैं उसमें हमारा भला ही होगा। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि अगर आज की जनरेशन कुछ समझना चाहती है या उसके अंदर अगर लॉजिक ढूंढ करके वो चीज करना चाहती है उसमें भी कुछ गलत नहीं है। आप समझ करके भी करते हैं, आप आंसर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन वो जेनरेशन अगर बिना उसके भी करती थी, इट वॉज आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट कि मेरे पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो मेरे भले के लिए ही होगा। एंड इन मेजोरिटी केसेस उसमें भला होता भी था। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने किया तो कोई हमारा बहुत नुकसान हो गया। एंड देन यू नो इट्स नॉट ओनली अबाउट जेनरेशन, आपको उस जेनरेशन में भी कुछ मिल जाएंगे जो हमेशा दे वर लुकिंग फॉर आंसर्स एंड वर इंक्विजिटिव। आपको इस जेनरेशन में भी कोई मिल जाएंगे जो ऐसे रिस्पेक्टफुल हैं, दे आर नॉट ऑलवेज लुकिंग फॉर लॉजिक। बट ठीक है, वी ट्राई टू जनरलाइज एंड पुट देम इन वन ब्रैकेट, बाकी दोनों ठीक है। आई डोंट सी देयर इज एनीथिंग रॉन्ग।
2: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौरमंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जेलेसी कैसे हमें अपने असली गोल से भटका देती है, चलिए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, देवदत्त पटनायक जो हैं वो बहुत कमाल के मुझे इंसान लगते हैं। एक शो भी किया था, हमारे एक तरह से मित्र भी हैं, और उन्होंने एक बहुत कमाल का आर्टिकल लिखा था अभी रिसेंटली, उसका नाम है हाउ सॉल्टी आर यू, और उसमें लिखते हैं, मैंने यहाँ कॉपी करके लाया हूँ मैं, कि जेंजी ने ईर्ष्या के बारे में बात करने का एक जेंटल लगभग चंचल तरीका खोज निकाला है, वो इसे सॉल्टी कहते हैं। हम सूचनाओं और ज्ञान से घिरे हुए हैं, फिर भी कोई हमें ईर्ष्या से निपटने का तरीका नहीं बताता। हम अपने भीतर की सॉल्टीनेस से कैसे निपटें और दूसरों की सॉल्टीनेस से कैसे निपटें।
4: ईर्ष्या एक फीलिंग है, हम सब कभी ना कभी उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जेलसी, पर उसकी जो रूट है वो है कंपैरिजन।
3: जी,
4: कंपैरिजन और इंस्पिरेशन में फर्क होता है।
3: हाँ।
4: जब आप किसी से इंस्पायर्ड होते हैं तो आपको वो बात याद रहती है, विशेषता याद रहती है, विधि याद रहती है, पर व्यक्ति भूल जाता है। कंपैरिजन में कई बार सीख भूल जाती है, क्या सीखना है, क्या अपने जीवन में इंकल्केट करना है, पर वो व्यक्ति याद रहता है। एंड द कॉन्वर्सेशन, इनर कॉन्वर्सेशन इज क्वाइट नेगेटिव, इसको ही मिलता है, सब इसको ही प्रिविलेज देते हैं, यही आगे बढ़ता है, दैट इज क्रिएटिंग जेलसी। जब हमें ये समझ में आ जाता है कि मुझे मेरे कर्म का फल मिलना है, उसको उसके कर्म का फल मिलना है, तो वो कंपैरिजन खत्म हो जाता है, ईर्ष्या खत्म हो जाती है। आप हर एक की सफलता को देख करके खुश होते हैं, हर एक के फेलियर में आपको उनके प्रति सहानुभूति रहती है, बट द होल थिंग इज समटाइम्स व्हेन वी कंपेयर विद थिंग, उसको मेरा मिल गया, इसलिए वो सॉल्टीनेस जो आप कह रहे हैं वो जाती नहीं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या जलसी सच में मोटिवेशन बढ़ाती है या बस प्रेशर क्रिएट करती है? आइए इस नए पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: देवदत्त जो हैं वो माइथोलॉजी के बारे में एक तरह से एक्सपर्ट, उन्होंने माइथोलॉजी से कहानी निकाल के यहाँ लिखी है। वाल्मीकि और हनुमान के बीच ईर्ष्या की बहुत सुंदर कहानी है। वाल्मीकि रामायण लिखते हैं और उनकी खूब प्रशंसा होती है, हम जानते ही हैं। ईर्ष्या भड़काने में माहिर जो नारद होते हैं वो उन्हें बताने आते हैं कि किसी ने तुमसे भी बेहतर रामायण लिखी है, तो वाल्मीकि की जो शांति वो भंग हो जाती है और इस बात की पुष्टि करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। तो हनुमान जी जो होते हैं वो केले के पेड़ों के जंगल में पाए जाते हैं और वहां पे वो पत्तियों पर उन्होंने रामायण पूरी की पूरी खुदी होती है, मतलब छोटे छोटे पत्तियों से उन्होंने खोद के बहुत लंबे केले के पेड़ पर उन्होंने पूरी रामायण लिखी होती है। तो ये उनकी लिखी हुई रामायण वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण से कहीं सुंदर होती है। तो वाल्मीकि घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि उनका काम जो है वो धूमिल हो जाएगा, उनकी पहचान मिट जाएगी। और फिर हनुमान एक अद्भुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य करते हैं, वो अपनी ही पत्तियों पर लिखी हुई रामायण को खा जाते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने जिज्ञासा में लिखी थी, वो राम को समझना चाहते थे। एक बार उनकी जिज्ञासा शांत हो गई तो उनके काम का उद्देश्य पूरा हो गया। प्रसिद्धि मायने नहीं रखती थी, चकाचौंध मायने नहीं रखती थी, ईर्ष्या मायने नहीं रखती थी। वाल्मीकि ने भूख और भय के कारण रामायण लिखी थी, हनुमान ने जिज्ञासा के कारण लिखी थी।
4: कई बार हम जो काम करते हैं, जैसे इसके अंदर बहुत सुंदर था, उसके पर्पस क्या था
3: जी,
4: जो उसके अंदर की बात है कि आप कुछ भी करते हैं उसका पर्पस क्या है। आपने किया, अपने लिए किया, उसके अंदर सफलता भी मिल गई, पर कभी कभी पर्पस जो था भूख और
3: स्नेह मिले, आकर्षण मिले,
4: एक्नॉलेजमेंट, तब आपके अंदर एक फियर रहता है, तब आप फियर करते हैं, आप सिक्योर नहीं होते, आप थोड़े से इनसिक्योर होते हैं। इसलिए पर्पस क्या है वो बहुत जरूरी है।
3: बहुत खूबसूरत।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट बच्चों को बुलिंग के असर से कैसे प्रोटेक्ट करता है, इस इमोशनल स्ट्रेंथ की रियल पावर को और करीब से जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इस बात से जो आप कह रहे हैं कि इमोशनल स्थिति के बारे में बात करते हैं कि कभी कभी दूसरे सिचुएशन के बारे में जो आपने बोला ना कि मेरी कोई गलती ही नहीं है, इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, संगत भी मेरी सही है, कई बार बहुत होता है कि जलन के कारण ही मुझे कोई बुलिंग करना शुरू कर देता है। जैसे मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी इज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, और उसको तरह तरह के नाम से पुकारा जाता है, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उस पर आपत्ति की जाती है, और वो बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो एक यूनिफॉर्म होता है तो यूनिफॉर्म पहन के जा रही है, लेकिन उसको परेशान किया जाता है, अलग तरह तरह के नाम दिए जाते हैं। तो इस समय पेरेंट के लिए तो जरूरी होता है कि भाई बच्चे को आप बताएं, देखो साइबर बुलिंग को टॉलरेट नहीं करना, प्लीज जाके प्रिंसिपल से बात करें वगैरह वगैरह,
4: बड़ों को बताएं
3: जितना हो सके। लेकिन बच्चा जिससे गुजर रहा है, जो उसके साथ हो रहा है, उससे उसको जूझने के लिए क्या करना चाहिए?
4: यही तो बात है ना, एक बच्चा है समझो, उसको आपने कहा कोई अलग अलग तरीकों से नाम से बुलाया जा रहा है, तो एक होगा ना जो उसको अलग अलग नाम से बुलाता होगा, दो चार होंगे जो उसको अलग अलग नाम से बुलाते होंगे, लेकिन अगर उस पेरेंट है या टीचर है, वो उस बच्चे को बार बार बताता है कि वो कौन है, भले उसको ये बुलाया जाता है, जैसे आई रिमेम्बर वन पर्सन शेयरिंग कि उसको कई तरह के नाम से, कोई पैंसी कहता था, कोई उसको कुछ कहता था, बुलाते थे, बट पेरेंट्स उसको सेलिब्रेट करते थे, उसको कहते थे अरे तुम स्पेशल हो, तुम यूनिक हो, तुम डिवाइन चाइल्ड हो, तो वो चीज उसके मन में इतना भरा हुआ था कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे सेलिब्रेट करते हैं, वो तो मुझे डिवाइन चाइल्ड बोलते हैं, वो तो मुझे, सो दैट टुक ओवर व्हाट अदर पीपल वर सेइंग। बट अगर कोई भी उसको है नहीं बताने वाला कि वो कौन है,
3: तब वो और भी,
4: फिर वो जो सारे शब्द हैं उसका इन्फ्लुएंस पड़ना शुरू हो जाएगा
3: और वो बिलीव करने लगेगा।
4: लाइक फॉर एग्जांपल, अब हम क्यों बात करते हैं कि हम थोड़ा बहुत भी कोई स्क्रिप्चर पढ़ें, थोड़ा बहुत भी अच्छा सुने, अब रोज परमात्मा हमको कहता है आई एम अ पावरफुल बींग,
3: जी बिल्कुल,
4: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम गॉड्स चाइल्ड, आई एम स्पेशल सोल, आई एम वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मर, ये एक स्वमान है मैं कौन हूँ। अब आप मुझे कह दें आप तो बेकार हैं, सो आई कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय आपने जो बोला, लेकिन इफ आई एम इन दैट कॉन्शियसनेस, मुझे पक्का है मैं कौन हूँ, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं उस स्थिति में हूँ, मेरी वो स्मृति है, तो आपके शब्द का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, देन आप अप्रिशिएट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं या जो आप बोलते हैं वो मेरी आइडेंटिटी बन जाती है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना कि मैं कौन।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्रिटिसिज्म को हर्ट की जगह ग्रोथ का टूल कैसे बनाएं? इस पर्सपेक्टिव शिफ्ट को अपनी इनर स्ट्रेंथ में कैसे बदलें? समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो चाहे आप बच्चे हो, पेरेंट हो, कोई भी हो, अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते रहें कि आई एम अ पावरफुल सोल, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं इससे गुजर सकता हूँ और मेरे से शक्तिशाली कोई नहीं है। तो जब वो प्रैक्टिस में रहेगी तो अगर कोई भी बात आएगी तो उस समय हम उसको डिफ्लेक्ट कर आसानी से कर सकते हैं।
4: A lot with people who are in public life also.
3: जी,
4: जैसे आप एक पब्लिक लाइफ में जाते हैं, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आप एक एक्टर है, होल वर्ल्ड कैन से एनीथिंग।
3: हाँ, क्रिटिसिज्म तो बहुत मिलती है।
4: नहीं, आप ओपन हो गए ना। आज आप एक क्रिकेटर है, आप एक शॉट लेते हैं, आप एक मैच खेलते हैं, सबको हक होता है
3: कुछ भी बोलने का,
4: कुछ भी बोलने का।
3: जी।
4: अब अगर वो ये भूल जाए एक बारी के लिए, कि वो भूल जाए कि वो कितना अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, उसने कितनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत करके वो 11 में आया है, ठीक है आज उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन स्टिल अगर उसको ये स्मृति ही नहीं रहे कि मैं फिर भी एक इंडियन प्लेयर हूँ और मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, केवल आज परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, तो वो तो लोगों के क्रिटिसिज्म सुन करके टूट जाए।

0: रहेगा।
1: बिल्कुल।
0: डू यू थिंक ही विल बी एबल टू परफॉर्म अगेन?
1: सही बात कह रही हैं। और बहुत लोगों के साथ होता भी है, और जो लोग अडिग खड़े रहते हैं उनके लिए आसान होता है।
0: ये समझना जरूरी है कि हम सबको चेंज नहीं कर सकते। आज ये तो दो चार बच्चे हैं स्कूल के, नहीं करना चाहिए, सबको काइंड होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, पर एक है कि अब परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ, और दूसरा है कि ठीक है कोई है भी जो थोड़ा ट्रोल करता है, क्रिटिसाइज करता है, उसको इतनी अहमियत देने की जगह जो आप हैं
1: उसको अहमियत दें,
0: उसको अहमियत दें।
1: बहुत खूबसूरत।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, ये अनोनमस है। पूछते हैं कि जब भगवान पर भरोसा ही हिलने लगे और कोई रास्ता ना दिखे तब क्या करें?
3: भरोसा हमारा तब हिलता है जब कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कोई इच्छा होती है। हम बहुत उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हमें लगता है हो जाना चाहिए। कभी कभी जब हमारे अनुसार नहीं होता लाइफ में, तब भरोसा हिलता है, हमें लगता है शायद भगवान ने हमारे साथ कुछ गलत किया। एक्चुअली में ये रियलाइजेशन होना कि हमारे साथ जो कुछ होता है वो हमारे कर्मों का फल होता है। दो चीजें, पहला सही गलत कर्म की पहचान देता है। उसका जो काम है, जब परमात्मा महावाक्य सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है
2: जी।
3: और दूसरा, परमात्मा जिसको हम कहते हैं सुप्रीम पावर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्व शक्तियों का भंडार है, उससे हमें शक्ति मिलती है कि अगर हमारे से कोई गलत कर्म हो भी गया है, आज या गलत आज उसका कॉन्सिक्वेंस लौट कर आए, तो हम उसको फेस कर सके, हम उसमें हिले नहीं, हम स्टेबिलिटी से उसको स्वीकार कर सके और उसको फेस कर सके। पर हम परमात्मा से शक्ति नहीं मांगते। हम तो उससे नाराज हो जाते हैं कि ये मेरे सामने आया ही क्यों, ये बात ही क्यों आई, आपने ये बात क्यों भेजी। तो कई बार क्लैरिटी ना होने के कारण हमारा भरोसा हिल जाता है। बाकी वैसे जो परमात्मा को समझता है, किसी ने भी अगर उसका अनुभव किया है, तो वो आपको यही बताएगा कि कितना वो रहम का सागर है, कितना प्यार का सागर है, कितना ज्ञान का सागर है। और वो तो चाहता ही है कि हर एक को इतनी शक्ति मिले कि उसके जीवन में मेहनत नहीं हो, संघर्ष नहीं हो, बहुत आराम से बेफिक्र बादशाह होकर के वो अपना जीवन क्रॉस कर सके।
2: स्टीवन फर्टिक नाम के एक अमेरिकन पास्टर हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, और एलिवेशन चर्च नाम का जो चर्च है उनके फाउंडर वो हैं। उन्होंने बहुत कमाल की एक बात कही जो मुझे इस संदर्भ में बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा करके प्रतीक्षा करने से भी कठिन काम ये है कि यही इच्छा करना कि काश हमने ऐसा किया होता। कि ज्यादातर हम प्रतीक्षा ही नहीं करते, उसको हम छोड़ देते हैं अपनी कामना करके, बस हमको लगता अभी हो जाना चाहिए। और आप वैसे भी कह रही हैं कि वो हमें सिर्फ मार्गदर्शन देता है, बाकी हमें ही करना है।
3: हाँ, मतलब परमात्मा सबके लिए अगर करते तो परफेक्ट करेगा ना।
2: सही बात है।
3: जैसे एज अ पेरेंट, आप पेरेंट हैं, आप अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं, फिर उसके कर्म से उसकी डेस्टिनी बनती है। गाइड करने के बाद भी बच्चा कई बार आपका कहना नहीं मानता, आप देख भी रहे होते हैं कि ये अपनी तकदीर को लकीर लगा रहा है, पर तो भी आप क्या कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा भी पढ़ा सकता है, समझा सकता है, गाइड कर सकता है, पावर दे सकता है, करना तो आपको ही है ना।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: gets hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची. It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर तन्मय महात्रे लिखते हैं कि लोग जज करेंगे, इस डर को कैसे हटाएं, खास करके रिच और हाईली एजुकेटेड लोगों के सामने।
3: अगर हमें इस चीज का फियर रहता है कि लोग हमें जज करेंगे, ये क्लियर निशानी है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम है। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है, तब आपको बाहर का वैलिडेशन चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है कोई आपको अक्नॉलेज करे, कोई अप्रूव करे, कोई कहे कि आप जो कर रहे हो वो बहुत सही है, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल है। किसी के लिए वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का वैलिडेशन होगा, किसी के लिए एजुकेटेड व्यक्ति का वैलिडेशन मैटर करता होगा, किसी के लिए रिच व्यक्ति का वैलिडेशन मैटर करता होगा। सामने वाले का फीडबैक लेना, उससे अपने को बेटर बनाने में कोई हर्जा नहीं है।
2: सही बात है।
3: लेकिन अपने किए पर डाउट करना, जिस क्योंकि कोई व्यक्ति आपको अप्रूव नहीं कर रहा, वो लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है। दोनों में फर्क है। मैंने कन्विक्शन से कुछ किया, मुझे फेथ है, लेकिन फिर भी अगर सामने वाले का कोई फीडबैक है, सो आई एम नॉट सो रिजिड ऑल्सो, वो ईगो हो जाती है। आई एम ओपन टू देयर फीडबैक, और अगर मुझे लगता है कि उनके फीडबैक में कोई वैल्यू है, आई एम रेडी टू चेंज ऑल्सो, लेकिन मैं वो ही करूंगा जो आपको पसंद है।
2: वो नहीं
3: मुझे सही भी नहीं लगता, लेकिन मुझे उसमें वैलिडेशन मिलेगा तो मैं वो करूंगा। वो लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है।
2: एंड तन्मय, बहुत जरूरी है समझना कि आप कुछ करें या ना करें, लोग तो जज करेंगे।
3: मैंने ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ भी आप करें, कुछ भी, लेकिन हर एक का कोई ना कोई ओपिनियन होगा, और वो सबका ओपिनियन आपके फेवर में हो ये नहीं हो सकता। इसलिए सबको खुश करने की, सबको प्लीज करने की ये हमारी
2: जरूरत नहीं है।
3: हाँ, ये नहीं होना चाहिए, पर्पस ही नहीं होना चाहिए।
2: सही बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: été.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: मिस्टर महेश बजाज जी लिखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है, और अगर होता है तो क्यों होता है?
4: लव एट फर्स्ट साइट, जहाँ तक मैं समझती हूँ, कई बार हम कहते हैं ना, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया।
3: हाँ।
4: होता क्या है कि जब आप किसी को मिलते हैं और आपको लगता है यही है।
3: हाँ।
4: आप उनको पहली बार नहीं मिल रहे होते।
3: अच्छा, इसमें भी कोई पुराना कनेक्शन है?
4: 100% कनेक्शन है, तभी वो एनर्जी एकदम एक्सचेंज होती है और आपको लगता है यही है। ये कई चीजों में होता है।
3: हाँ।
4: हम किसी जगह पर जाते हैं, हमें लगता है हम यहाँ पहले आए हुए,
3: पहले आ चुके हैं। देजा वु
4: हम किसी
3: हैं
4: से मिलते हैं, हमें लगता है हम इनसे पहले मिले हुए हैं।
3: हाँ।
4: हम मिले हुए होते हैं।
3: हाँ।
4: हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट होता है, और कार्मिक अकाउंट का मतलब बुरा ही नहीं होता।
3: हाँ।
4: कार्मिक अकाउंट किसी से हमें बहुत सुख मिलना होता है,
3: हो सकता है
4: किसी से हो सकता है कि हमारा कुछ दुख भी मिलना हो, पर वो एकदम लगता है यही है। अब कॉस्ट्यूम बदल गया पर सोल वही है, तो वो सोल के नजदीक आते ही एनर्जी एक्सचेंज होने लग जाती है, और इसीलिए हम उसकी तरफ ग्रेविटेट होने लगते हैं, और फिर हमारा जो भी कार्मिक अकाउंट है, जो भी रिश्ता है, वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है।
3: तो आशा करते हैं महेश बजाज जी, आपको इसका जवाब मिल गया। लेकिन जिस तरह से आपने लिखा है, मुझे लगता है बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द में है। तो अब सलमान खान की लाइफ से सीखिए। पहले उन्होंने फिल्म की थी मैंने प्यार किया, और फिर उन्होंने फिल्म की मैंने प्यार क्यों किया। तो मेरे को लगता है महेश बजाज भी उसी सिचुएशन में इस वक्त है।
4: एक्चुअली होता क्या है ना, इसमें कभी कभी हमें लगता है जब हम किसी की तरफ ग्रेविटेट होते हैं ना, हमें लगता है यही है।
3: हाँ।
4: तो आपको लगता है कि इससे तो मना एक अंदर में होता है कि ये परफेक्ट है।
3: हाँ।
4: पर होता उनके साथ हिसाब किताब है।
3: हाँ।
4: तो फिर कभी कभी हिसाब किताब के कारण जिस व्यक्ति से आपको बहुत प्यार होता है, उससे बहुत दुख भी मिलने लगता है, उसकी किसी हैबिट से, किसी संस्कार से। फिर आपका मन कहता है कि Why did I gravitate in this direction? मना क्यों, वो क्यों का आपको आंसर नहीं मिल रहा होता।
3: सही बात है।
4: पर एक्चुअली में जिनके साथ हिसाब किताब होता है, वो अपने बनकर आ जाते हैं। इसे कार्मिक अकाउंट सेटल करना जरूरी है। कई बार हम किनारा करते हैं, हम कहते हैं इनको छोड़ देते हैं। आप छोड़ देंगे, वो फिर किसी ऐसे रूप में आ जाएंगे कि आप छोड़ भी नहीं पाएंगे। वो बिल्कुल बच्चे के रूप में ही आ गया। हाँ। बिल्कुल घर के मेंबर के रूप में ही आ गया। किनारा करना ऑप्शन नहीं है, सेटल करना ऑप्शन है।
1: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: लाइफ का बिगेस्ट स्कैम पता क्या है? अलार्म हम सुबह 6 बजे का लगाते हैं और उठते 6:30 बजे हैं, और फिर ब्लेम करते हैं स्ट्रेस को। यस, वी आर ह्यूमंस। गुड मॉर्निंग मेरे फेवरेट देसी ह्यूमन। कॉफी हाथ में है या सिर्फ मीटिंग का स्ट्रेस है साथ में? वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला और अगले कुछ घंटों के लिए ऑफिस, ट्रैफिक, लॉन्ड्री, घर के काम, ब्रेकफास्ट, सब कुछ साथ साथ में करना है। वैसे तुम्हारा दिन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है पता नहीं, मेरा दिन काफी देर पहले शुरू हो चुका है। अब फिलहाल अगर तुम कम्यूट कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयारी कर रहे हो, अपने ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे हो, या फिर अभी तक नींद ही खुली नहीं है तुम्हारी, मैं कुछ घंटों तक तुम्हारे साथ रहने वाली हूं। और मेरे साथ होगा बॉलीवुड, थोड़ा सा गॉसिप, थोड़ी सी मस्ती, फील गुड अमेजिंग बातें, एंड साथ साथ में अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स, some random facts and मिर्चीदार bangers and obviously मिर्ची की vibes। मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ फटाक से मुझे फॉलो कर लो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप नंबर है 9033647244। अभी चलाते मिर्चीदार bangers तुम्हारे लिए। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: फ्रेश माल।
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और चलो एक मिनट के लिए रिवाइंड मारकर पता करते हैं कि आज का दिन क्यों खास था हिस्ट्री में। सबसे पहले 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया को अपनी लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी समझाई थी। और फिर 1811 में वेनेजुएला स्पेन से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके साउथ अमेरिका का ट्रेंड सेटर बन गया। 1852 में फ्रीडरिक डगलस ने एक पावरफुल स्पीच दी जो इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम के लिए आज भी याद की जाती है। एंड फैशन लवर्स 1946 में पेरिस में बिकिनी ने अपना डेब्यू किया, मतलब कि एक ऐसा आउटफिट जो इतनी हेडलाइंस बनाकर गया। 1954 में एल्विस प्रेस्ली ने अपना पहला कमर्शियल सॉन्ग रिकॉर्ड किया था और रॉक एंड रोल ने बोला था माइक चेक आई एम हियर। साइंस ने 1996 में हिस्ट्री बना दी थी जब डॉली द शीप दुनिया का पहला क्लोन्ड मैमल पैदा हुआ था। और ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन 1994 में आज के दिन अमेजोन सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था। हाँ जी, तब किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि कुछ दिनों बाद रात को 2 बजे तक तुम टिश्यू पेपर और एयर फ्रायर सब कुछ वहां से ऑर्डर कर रहे होगे। वैसे अगर तुम्हें भी ऐसा कुछ पता है हिस्ट्री के बारे में तो मुझे बता सकते हो। तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर है। देखो बड़ा आसान है मुझे ढूंढना, मिर्ची पी टाइप करोगे तो ही आ जाएगा। पर एक्स से जाओ, MIRCHIPRIS टाइप करो, मुझे ढूंढो, मुझे फॉलो करो, मुझसे बातें करो। और व्हाट्सएप पर भी नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने। वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अभी टेम्परेचर है 68 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। स्काई जो है वो प्रिटी क्लाउडी है, लेकिन फील हो रहा है टेम्परेचर अराउंड 70 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। मतलब वेदर आज कह रहा है मैं कूल हूँ, लेकिन तुम्हारे जितना नहीं। आज का टेम्परेचर रेंज रहने वाला है 67 से 84 डिग्री फारेनहाइट के बीच में, और फील्स लाइक टेम्परेचर होगा 67 से 85 डिग्री फारेनहाइट के बीच में। यानी कि आज का तापमान और फील्स लाइक तापमान सिमिलर ही है। गुड न्यूज ये है कि लास्ट 24 आवर्स में देयर वाज जीरो रेन, लेकिन अगले 24 आवर्स में अराउंड 3 मिलीमीटर्स की बारिश, लाइट रेन एक्सपेक्टेड है। तो अम्ब्रेला को कम्प्लीटली इग्नोर करने की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं भी लेकर गए तो इतना बवाल नहीं मचने वाला है लाइफ में। और अगर आज का वेदर कल से कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है। कल का हाई था 85 डिग्री फारेनहाइट तक, आज 84 डिग्री फारेनहाइट तक जाने वाला है। और तुम अगर बाहर जाने वाले हो तो SPF 50 +++ लगाकर ही जाना, एंड मेरे दोस्त लेयर के प्लेयर बनकर ही जाना, एंड ऑफ कोर्स मिर्ची की वाइब्स अपने साथ रखो और अपनी वाटर बॉटल भी कैरी करना। हैव प्लेंटी ऑफ वाटर एंड आई एम गोना प्ले प्लेंटी ऑफ मिर्चीदार बैंगर्स फॉर यू। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी लिख लो 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची आवा का ट्री। यहाँ पर मिलती है तुम्हें अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले रशिया ने अपना पहला MC-21 पैसेंजर एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाई किया है, जिसे रिपोर्ट्स के मुताबिक डोमेस्टिकली सोर्स्ड कंपोनेंट्स के साथ डेवलप किया गया है। प्लेन ने लगभग 1 hour and 23 minutes की टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट की है, करीब 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और 6000 meters का एल्टीट्यूड टच किया है। एविएशन गीक्स के लिए दिस इज डेफिनेटली वन टू वॉच। एंड नंबर टू पर 20-year-old मोरक्कन फुटबॉलर फतेन बेन अमार एल अजीजी की स्पेन के सेउटा पहुंचने की कोशिश के दौरान ड्राउनिंग से डेथ हो गई। उनके परिवार के मुताबिक उनका शेंगेन वीजा उसी दिन अप्रूव हुआ था। उनके फुटबॉल क्लब ने कहा कि अनसेफ माइग्रेशन ने ड्रीम्स इनटू नाइटमेयर्स बदल दिए। एंड लास्टली, टीम इंडिया के विकेट कीपर बैटर ईशान किशन फिलहाल क्रिकेट ब्रेक के बीच में अपनी दूसरी इनिंग्स खेल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पटना ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर के रोल में वापस ड्यूटी ज्वाइन करके। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी के लिए मिर्ची दर बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करने वाले हूँ। एंड यू गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot. This is the future, man.

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La virbala burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, हाँ मैं तो चल रही हैं।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं
2: 9:30-10 बजे तक। ये बताओ ना बचा जाएगा?
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे।
2: हेलो हेलो,
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद का बजा रहा है ये?
3: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन करो, तो यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल,
6: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तब

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की गॉसिप जो है ना वो एक वेडिंग के मंडप से आई है। एक जेंजी कपल है जिनकी पर्पल हल्दी सेरेमनी इंटरनेट पर फुल ऑन वायरल हो गई है। हाँ जी, ट्रेडिशनल पीली हल्दी की जगह इन्होंने लैवेंडर कलर पेस्ट यूज किया है और सोशल मीडिया ने तुरंत अपनी जूरी बिठा दी है। कुछ लोगों ने मजाक में कपल को थानोस कपल भी कह दिया है और दूसरी साइड बोल रही है इट्स क्लासी, एस्थेटिक एंड बिल्कुल ही हटके है। सच बताऊं तो इंडियन वेडिंग्स में एक रूल तो पक्का है, शादी कपल की होती है लेकिन ओपिनियंस पूरे खानदान और पूरे इंटरनेट के होते हैं। वैसे तुम टीम क्लासिक येलो हल्दी हो या फिर टीम पर्पल वाइब्स, जो भी हो ये याद रखना कि शादी में कलर से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुश रहना और जिससे शादी कर रहे हो उससे प्यार करना। और शादी के सीजन की बात चली रही है तो क्यों ना तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, जहां पे तुम्हें 25% ऑफ मिल रहा है ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस। वाओ। एंड अगर तुम्हारे पास 18 कैरेट्स या उससे अबव का पुराना गोल्ड रखा है जो तुम्हारी दादी, चाची, मामी, ताई किसी ने भी तुम्हें दिया हो या तुमने खुद ने ही लिया हो, उसे एक्सचेंज करा सकते हो जाकर तनिष्क पर एट 0% डिडक्शन। ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड एंड कीप लिसनिंग टू मिर्ची फॉर सच अमेजिंग सेल्स एंड ऑफर्स के अपडेट। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी फिलहाल चलाते हैं मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माई बर्थडे सुपरस्टार. अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले एक जायंट मिर्ची स्टाइल हग एंड ढेर सारी गुड वाइब्स. मैं तुम्हारी कॉफी कभी ठंडी ना हो, जूम मीटिंग्स जल्दी खत्म हो जाए और घर से आने वाले लड्डूज जो है ना उनकी कैलोरीज काउंट ही ना हो. और देखते हैं आज तुम किन फेमस लोगों के साथ अपना स्पेशल डे शेयर कर रहे हो. आज के बर्थडे सेलिब्रिटीज में सबसे पहले हैं द वेरी चार्मिंग काजोल एंड द वेरी बबली जूनेलिया डिसूजा. देन वी गॉट Grey's Anatomy से जेसी विलियम्स, एक्ट्रेस एंड सिंगर ओलिविया होल्ट एंड द ब्रेडी बंच फेम मॉरीन मैकॉर्मिक, साथ में एनबीए लेजेंड पैट्रिक यूइंग, बास्केटबॉल सेंसेशन एंटनी एडवर्ड्स, स्पेन के फुटबॉल वंडर किड गावी, अल्टरनेटिव रॉक स्टार यंग ब्लड एंड रॉक गिटारिस्ट पैट स्मियर. और आज हम याद करते हैं उन दो लेजेंड्स को जिनकी बर्थ एनिवर्सरी आज के दिन है. सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो इंसान जिन्होंने सबसे पहले मून पर कदम रखा, और साथ में फ्रेंच ऑथर गी डे मॉपासों जिनकी शॉर्ट स्टोरीज आज भी लिटरेचर लवर्स की फेवरेट हैं. तो अगर आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो ये याद रखो तुम सिर्फ एक साल बड़े नहीं हुए हो बल्कि ऑफिशियली और एक्सपीरियंस्ड और ऑसम और इनक्रेडिबल हो चुके हो. बस बैक पेन का थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी तो तुम रॉक स्टार हो. और अगर तुम अपने शाउट आउट भेजना चाहते हो मुझे तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472. Double four. Stay tuned and stay hot.

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, aka Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello, ending the second hour of Mirchi Mornings with a bang. Yani ki Mirchi Mornings par aane wali hai ab gold rate update. Mera naam hai Priscilla.
2: Raj was wishing everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,020. $4,020 per ounce ke saath aaj subah gold ke price trade kar rahe hain. और इस साल के बिगनिंग में गोल्ड $5,600 पर ट्रायउंस पीक टच कर चुका है. आज करेक्शन के साथ $4,020 पर ट्रायउंस डेफिनेटली एंट्री पॉइंट पड़ती है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए. 1 ounce, 10 ounce, 100 grams, किलो बार्स, पैम सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स में इन्वेस्ट करने के लिए राज ज्वेल्स की टीम के साथ कनेक्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: एंड देयर यू हैव इट. मिर्ची मॉर्निंग्स पर सुनी तुमने एक्सक्लूसिव गोल्ड रेट अपडेट With me, Priscilla. Of course, follow me Insta and X पर. मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp का number है 9033 Mirchi, that's 9033647244. For more such updates, stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और टाइम हो गया है मिर्ची आवर का 3 का। यहाँ पर हम अपडेट्स सुनेंगे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले रिपोर्ट्स के हिसाब से द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लानिंग एडिशनल फीस ऑन H-1B एंड L-1 वीजा extensions. सिंस इंडियंस अकाउंट फॉर अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ H-1B extension applications, दे कुड बी द ग्रुप मोस्ट अफेक्टेड इफ द प्रपोजल मूव्स फॉरवर्ड। रिपोर्ट्स ऑल्सो इंडिकेट द एडिशनल फीस वुड बी पेड बाय एम्प्लॉयर्स। फिलहाल इट्स अ प्रपोजल बींग रिपोर्टेड, सो वील कीप एन आई ऑन हाउ इट डिवेलप्स। नंबर 2 पर पाकिस्तान के बॉक्सर कुदरतुल्ला रिपोर्टेडली ग्लासगांव में टीम होटल से लापता हो गए। जब नेशनल कंटिंजेंट वापस घर लौटने की तैयारी कर रहा था, ऑफिशियल्स के मुताबिक उनका पासपोर्ट और रिटर्न टिकट टीम मैनेजर के पास ही था। अथॉरिटीज इस मैटर की जांच कर रही हैं। एंड लास्टली, साउथ कोरिया में 8 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है आफ्टर अथॉरिटीज अलेज्ड दैट दे एंटर्ड ओसान एयरबेस विदाउट ऑथराइजेशन ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट व्हाइल शाउटिंग एंटी यूएस स्लोगन्स। स्टूडेंट्स ने कहा है कि वो एक सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट से जुड़े इशू पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अथॉरिटीज फिलहाल इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: हे कभी आना तुम मेरी गली,
1: कभी आना तुम अपनी गली,
0: कभी आना तू मेरी गली।
2: मिर्ची
3: इसका बना उसका बना सबका बना, मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो, हाँ जी बोलिए।
5: क्या बोलूँ जी, आप बोलिए।
4: आप बोलिए ना,
5: कॉल आपने किया, आप बोलिए।
4: कॉल मैंने किया है। हेलो,
5: अरे बोलो भाई, कॉल तुमने किया, बोलो क्या हुआ।
4: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार, मैं यहाँ सो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार। आपने नंबर मेरा डायल किया है, मेरे घर बेल बजी है यार।
5: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा। अरे फोन मैंने नहीं किया यार,
4: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
5: नींद में है क्या?
4: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। मैं देख रहा हूँ नंबर,
5: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है।
4: आ जाते उठ के, मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखी तेरे। हेलो, हाँ बताइए।
5: तेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दबा होगा बार बार।
4: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है।
5: हेलो,
4: फिर कोई यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार, मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।
5: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
4: तो आप गाड़ी चलाइए, नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए, फोन मत करिए मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे।
5: फोन नहीं कर रहा अभी,
4: आप देख बदतमीजी से बात मत करिए, आप समझ गए। मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। हटा, मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ। मैं
5: चप्पल
4: पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे, फोन क्यों।
5: जीना आराम कर दिया तुम जैसे,
4: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग। इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ, दांत तोड़ दूंगा। चप्पल चप्पल है मेरे हाथ में।
5: फोन आ रहा है, मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
4: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए। अभिषेक, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड वेलकम टू राशि जोन। यहाँ पर हम स्टार्स की बातें करते हैं, वो स्टार्स नहीं जो बॉलीवुड में होते, वो स्टार्स जो तुम्हारे हाथों में।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, जो काम सिर्फ बजट की वजह से होल्ड पर था उससे स्टार्ट कर दो। स्टार्स कह रहे हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। लकी कलर फॉर यू इज येलो, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज किसी और का ड्रामा तुम्हारे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का पार्ट मत बनाओ। स्माइल करो, पॉपकॉर्न इमेजिनरी ही सही, लेकिन लाइफ एंजॉय जरूर करो। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज, लकी नंबर इज 8। जेमिनी यानी मिथुन राशि, ओवर थिंकिंग को आज अनपेड इंटर्नशिप पर भेज दो। स्काई लिटरली नहीं गिरने वाला है, रिलैक्स। लकी कलर फॉर यू इज क्रिम्सन, लकी नंबर इज 29। कैंसर यानी कर्क राशि, दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आज घर फैमिली और अपने सर्कल पे फोकस करो, वही सबसे बड़ा डिफरेंस लाएगा तुम्हारी लाइफ में। लकी कलर फॉर यू इज ऑलिव, लकी नंबर इज 11। लियो यानी कि सिंह राशि, आज कॉन्फिडेंस ही तुम्हारा सुपर पावर है। एम हाई क्योंकि लायन परमिशन नहीं मांगता है, प्रेजेंस दिखाता है। लकी कलर फॉर यू इज गोल्ड, लकी नंबर इज 33। वर्गो यानी कन्या राशि, जो टेंशन तुम इमेजिन कर रहे हो, चांसेस हैं कि वो सिर्फ इमेजिनेशन ही निकलने वाला है। डीप ब्रेथ लो, सब मैनेजेबल होगा। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 6। एंड दैट वाज राशि जोन नंबर 1। अगर तुम्हारी राशि अभी बाकी है, डोंट गो एनीवेयर, और डेली मिर्ची वाइब्स के लिए फॉलो करो मिर्ची प्रिस को ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। एंड राइट नाउ मिर्ची दैट बैंगर्स कमिंग अप योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: वेलकम बैक मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला और अब सुनने वाले हैं हम राशि जोन का पार्ट टू।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, स्मॉल वरीज को जूम आउट कर दो, बिग पिक्चर ब्यूटीफुल लग रहा है ना, और गुड वाइब्स भी लाइन में है। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 24। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, हर गोल एग्जैक्टली वैसे कंप्लीट नहीं होता है जैसे प्लान किया हो, एडजस्टमेंट फेलियर नहीं होता है बल्कि स्मार्टनेस होती है। लकी कलर इज मरून, लकी नंबर इज 41। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, जो बर्डन कल माउंटेन लग रहा था आज मोलहिल लगेगा। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, लकी कलर इज स्टील, लकी नंबर इज 13। केप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, किसी अपने को ऑनेस्ट एडवाइस की जरूरत है, आज दिल से बोलो लेक्चर मोड से नहीं। लकी कलर फॉर यू इज स्लेट कलर एंड लकी नंबर इज 27। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, बैलेंस ही आज का मैजिक वर्ड है, ना ओवर वर्क ना ओवर चिल, टीम वर्क में थोड़ा सा पेशेंस भी एड कर देना। लकी कलर इज इंडिगो, लकी नंबर इज 35। पाइसीज यानी कि मेन राशि, क्लोजेट हो या लाइफ हो, जो काम का नहीं है उसे गुड बाय बोल दो ना, स्पेस बनेगा तो अच्छी अच्छी चीजें भी आएंगी लाइफ में। लकी कलर इज मिंट ग्रीन, लकी नंबर इज 19। ओह दैट राइम्ड। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट टू। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करना है तो जाओ इंस्टाग्राम और एक्सपर्ट ढूंढो मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और अगर व्हाट्सएप करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, 9033 647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं and it's all required in Spider-Man brand new day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: और बस आज का मिर्ची मॉर्निंग्स का प्लेलिस्ट यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है। मैं यानी कि प्रिसिला जा रही हूँ यहाँ से टाटा बाय बाय बोलकर, लेकिन जाने के पहले तुम्हें कुछ बताकर जाती हूँ। स्ट्रेट फ्रॉम हॉलीवुड, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने बॉक्स ऑफिस पे लिटरली वेब फेंक दिया है, मतलब अपने जाल में ऑडियंस को फंसा लिया है। फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 6 दिनों में ही $1 बिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्रॉस कर लिया है। इमेजिन मेकिंग इट द सेकेंड फास्टेस्ट मूवी ever to hit that milestone. Number 1 पर अभी भी Avengers का Endgame है, लेकिन Peter Parker ने भी बोल दिया है friendly neighborhood, हाँ, नहीं भाई मैं global superstar हूँ। And honestly, Spider-Man की life देखकर लगता है ना, office responsibility, personal life, superhero हो या देसी adult हो, balancing act तो सबको करना पड़ता है, right? और चाहे life एक मकड़ी के जाले से ही क्यों ना अटकी पड़ी हो। ओके, आई नो दैट्स अ बैड जोक। तो इसी वजह से मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए। थैंक यू फॉर लेटिंग मी बी पार्ट ऑफ योर कम्यूट, योर किचन प्लेलिस्ट, या फिर तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम, या फिर डेस्क, या फिर तुम्हारे घर में किसी भी कोने में बैठ के तुमने अगर मुझे सुना है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कल फिर से मिलेंगे नए गाने, नए स्टोरीज और नई अपडेट्स लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। मेरा नाम है प्रिसिला, याद रखना, और ये भी याद रखना कि मुझे जाकर सोशल मीडिया पर फॉलो करना है। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। इंस्टाग्राम और एक्स दोनों पर ही मैं उपलब्ध हूँ, और साथ साथ में व्हाट्सएप पर भी। 9033 इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुझे लगता है हर किसी के अंदर एक बावर्ची होता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। और सबने ना कभी कुछ ना कुछ तो कुक किया होता है, फिर चाहे वो हॉस्टल में तुम्हारे 2 मिनट नूडल्स हो या फिर चाय। तो हम सब कहीं ना कहीं तो बावर्ची होते ही हैं। इसी टाइटल को रखकर ऋषिकेश दा ने उस जमाने की एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बनाई विथ राजेश खन्ना एस बावर्ची एंड जया बच्चन जी। इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, एके हंगल साहब, असरानी साहब, दुर्गा खोटे। तो आज ना इसी मूवी की कहानियां बताऊंगी जो कि मैं कुक नहीं करके आई हूँ, वो सच में ये खट्टी मीठी किस्से एक्चुअली में ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म हुए थे। शुरुआत करेंगे फिल्म की कास्ट और क्रेडिट से। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो विनीत जी।
4: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
4: सही है। हाँ मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
4: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई, हमारे जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
4: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
4: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
4: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
4: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
4: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
4: हेलो हेलो।
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
4: बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
3: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
4: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
5: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
4: अच्छा भैया
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना ऋषिकेश दा, राजेश खन्ना, जया भादुड़ी जी की फिल्म बावर्ची की बात हो रही है। आपको पता है इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था कि कास्ट और क्रेडिट को ना दिखाया जाए। हर फिल्म में जैसे क्रेडिट दिए जाते हैं ना, ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें क्रेडिट्स फिल्म के शुरुआत में नहीं दिए गए। फिर क्या किया गया, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो पता होगा, और अगर नहीं देखी है या फिर बहुत पहले देखी थी तो मैं याद दिलाऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ये यूनिक आइडिया फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश दा का था। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। राजेश खन्ना थे, जया बच्चन थी और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। अब इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि क्रेडिट्स नहीं दिए गए, यानी देयर वर नो टाइटल कार्ड्स। तो फिर क्या किया गया था, इसमें अमिताभ बच्चन जी के वॉइस ओवर ने हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और ये यूनिक आइडिया पहली बार किसी फिल्म में देखा गया था। अच्छा, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से क्यों उन्होंने टाइम निकाला, ये अभी बताऊंगी श्रेया के साथ। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओह आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने। वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टाइडल्स के साथ एक्सपेरिमेंट ये पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। इट वॉज द फिनोमिनल ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने ये सोचा भी और अपनी फिल्म बावर्ची में किया भी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही थी द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची की, ऋषिकेश दा की डायरेक्टेड, जिसमें बावर्ची बने थे राजेश खन्ना, उनकी लव इंटरेस्ट बनी थी जया बच्चन जी। और इस फिल्म में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कास्ट एंड क्रू के नाम नहीं दिए गए थे, बल्कि एक बहुत यूनिक आइडिया सोचा ऋषिकेश दा ने, एंड दैट वाज कि हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर यूज किया गया। अब अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, तो ऋषिकेश दा उनसे ये फेवर मांगने में थोड़ा कतरा रहे थे। उन्होंने जया जी से वाइल्ड शूटिंग द फिल्म ऐसे ही मुस्कुरा के बात बात में कह दिया कि काश अमित ये काम कर पाता। ये बात जया जी ने घर जा करके अमित जी को डिनर पे बताई। अमिताभ बच्चन और जया जी के लिए ऋषिकेश दा फादरली फिगर थे, हमेशा से एक बड़े भाई थे। जैसे ही अमित जी ने ये बात सुनी, वो ऋषिकेश दा के घर पहुंच गए और उनसे नाराज होके कहा, दादा ये बात आप मुझसे आके नहीं कह सकते थे, आपको जया की जरूरत पड़ी इसके लिए। ऋषिकेश दा ने मुस्कुरा दिया और उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। पुरानी जीन्स पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, तो बस वापस आओ श्रेया के साथ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ना ये दोनों डेटिंग फेज में थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बावर्ची की थोड़ी देर पहले। तो इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और जया जी ना एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, वो प्यार में धीरे धीरे पड़ रहे थे। तो क्या होता था कि अमित जी जया जी को मिलने फिल्म के सेट पे जाते थे। अब सेट पे तो उनको उस टाइम के सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना भी मिलते थे, जिन्हें अमिताभ बच्चन थोड़े अखरते थे। अच्छा, काका उस टाइम पे अपने स्टारडम के खुमार में भी थे। अमिताभ बच्चन बिजी जरूर थे, उनके पास फिल्में बहुत थीं, लेकिन जनरली उनकी फिल्में इतनी खास चल नहीं रही थी। ऐसे में काका उनको ताने मारा करते थे, रिमार्क्स पास किया करते थे। क्या अमिताभ बच्चन को गुस्सा आया या फिर उनकी तब की गर्लफ्रेंड जया जी को, बताऊंगी थोड़े से गानों के बाद। मुझे बहुत मजा आता है आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में, क्योंकि फिर मुझे यकीन होता है कि आप वापस यहाँ होंगे। सो कम राइट बैक पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में है क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ
1: आ जाते उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
2: तेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दब रहा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
1: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा अभी
1: आप देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल पता
1: नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
2: क्यों आराम कर दिया तुम
1: जीना बता रहा यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी, मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

काका बोले तो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन जी को बहुत सारे ताने मारते थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है ऋषिकेश दास द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। तो मैं कहाँ पे छोड़ के गई थी बात? हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन एंड जया जी वर डेटिंग। वो एक दूसरे को मिल रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे थे। तो अमित जी के पास बड़ी सारी फिल्में थी, वो बिजी भी थे, लेकिन उनकी फिल्में इतनी चल नहीं रही थी। ऐसे में द सुपर सक्सेसफुल राजेश खन्ना जब उनको सेट पे देखते तो ऑफकोर्स उन्हें वो कॉम्पिटिशन लगते और वो उनको बहुत सारे ताने मारते। अमिताभ बच्चन भी सुन लेते, जया बच्चन भी सुन लेती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब काका ने एक बहुत ही खराब शब्द कहा। इस शब्द को सुन करके जया जी का सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने काका को जाकर के उनके कान में एक ऐसी बात बोली जिसके बाद से उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं कहा। वो शब्द क्या था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

only on Radio Mercy New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: मनहूस, ये कह के बुलाया था काका ने अमिताभ बच्चन जी को। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है बावर्ची फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश दा, फिल्म के मेन लीड राजेश खन्ना और फिल्म की हीरोइन जया बच्चन। ये वो टाइम था जब जया बच्चन जया बहादुरी थी और अमिताभ बच्चन बहुत सारी फिल्में कर रहे थे लेकिन उनकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, वो फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी एक के बाद एक। ये वो टाइम था जब जया जी और अमिताभ बच्चन प्यार करने लगे थे एक दूसरे से, तो अमित जी ना बावर्ची के सेट पे उनसे मिलने जाते थे और हाँ ऋषिकेश दा तो उनके दोस्त ही थे। ऐसे में राजेश खन्ना को बहुत अखड़ते थे। राजेश खन्ना चलते फिरते अमिताभ बच्चन को कोई ना कोई ताना मार ही देते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब जया जी के सब्र का बांध टूट गया और वो था जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को कहा, मनहूस, तुम मनहूस हो, जिस भी फिल्म में जाते हो वो फ्लॉप हो जाती है। ये बात जया जी के दिल पे सीधे जाके चुभी। उनको इतना गुस्सा आया कि अमित जी उन्हें चाय पे वापस बैठाते रहे, बैठ जाओ छोड़ो जाने दो। जया जी गुस्से में उठी, राजेश खन्ना के पास गई और उनके कान में कहा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी कि ये आदमी क्या बनेगा और आप क्या रह जाएंगे। इस एक लाइन के बाद वो वापस आके चाय पीने लगी। एंड आफ्टर दिस काका ने अमिताभ बच्चन को कभी ताना नहीं मारा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और भी किस्से हैं उस जमाने के, तो गाने सुन करके यहीं वापस आने।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची पायल्स को साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हाय, माय नेम इज पीटर पार्कर।
3: ओके देन, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो, इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
4: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल।
3: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू, I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है, क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू, एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने, वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा एक और चीज में ये फिल्म बावर्ची खास थी, पुरानी जीन्स पर। हाय मेरा नाम है श्रेया और आज मूवी बावर्ची की बात कर रहे हैं। राजेश खन्ना, जया बच्चन एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। राजेश खन्ना यानी काका उस टाइम पे ना सुपरस्टार थे, बल्कि कहा जाता है कि इंडिया के वो फर्स्ट सुपरस्टार थे। उनके साथ हर हीरोइन ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, मुमताज जी हो, आशा पारेख हो, जीना तमानो हो, तनुजा जी हो, ऑल ऑफ देम। लेकिन सिर्फ एक हीरोइन थी जो उस टाइम पे अपने स्टारडम के पीक पे थी, पर काका से थोड़ी दूरी बना के चलती थी। उन्होंने राजेश खन्ना के ऑपोजिट एज इज लव इंटरेस्ट सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया और वो थी बावर्ची। जया जी और राजेश खन्ना की ये रोमांटिकली पेयर अप होने वाली पहली और आखिरी फिल्म थी, इसीलिए है ना ये यूनिक फिल्म, क्योंकि ऋषिकेश दा इन दोनों को एक साथ ले आए थे इस पिक्चर में। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, वापस आओ, बातें तो अभी बहुत सारी बाकी हैं उस जमाने की।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक ऐसी फिल्म जिसने हमें जम करके हंसाया और बहुत सारे सीन्स में इमोशनल भी कर दिया, आज उसी की बात हो रही है, बावर्ची। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही हूँ ऋषिकेश दा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। अच्छा, जो रेट्रो फैंस हैं उन्होंने डेफिनेटली ये फिल्म देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म में राजेश खन्ना बावर्ची बने थे, एक जॉइंट फैमिली के लिए खाना बनाया करते थे। पर अगर जब आप फिल्म देखोगे ना तो वो खाने से ज्यादा वो पूरी फैमिली का ख्याल रखते थे। सबके सीक्रेट्स भी इसी बावर्ची के पास होते हैं। जब ऋषिकेश दा ने ये अलग हट करके कैरेक्टर एकदम अलग हट करके फिल्म काका को सुनाई ना, उन्हें बड़ा पसंद आया। सबसे ज्यादा एक्साइट उनको किया था बावर्ची की कॉस्ट्यूम, हाफ पैंट्स, एक शर्ट और सर पे टोपी। अब ये जो टोपी थी ना, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इस टोपी को दो वजहों से पहना था राजेश खन्ना ने, एंड वो दो रीजंस क्या थे? आहा, अब तो आप मुझे जान गए हो, ऐसे कहाँ बताती हूँ मैं आपको। ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में श्रेया को तो बड़ा मजा आता है, तो गाने सुन करके जल्दी से वापस आओ, फिर बताती हूँ इस टोपी के पीछे की कहानी। ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो विनीत जी।
4: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
4: सही है। हाँ मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
4: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
4: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
4: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
4: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए।
4: हेलो
3: हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
4: क्या बजा रहे, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
4: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चलाएंगे?
4: हेलो हेलो
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
4: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
3: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
4: अरे कॉफिन कर यहाँ क्यों लेके आए तुम?
5: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया सर, आप बुरा मत मानिए।
4: अच्छा भैया
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ only on मिर्ची it's hot
7: yep पटाक।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

लोगों को लगा कि ये टोपी राजेश खन्ना ने फिल्म के कॉस्ट्यूम के चक्कर में पहनी है, लेकिन इसका रीजन तो कुछ और ही था। हाय, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं मुझे पुरानी जीन्स पे, और आज बात हो रही है द फिनोमिनल फिल्म बावर्ची की। अच्छा, ऋषिकेश दा जब ये रोल लेकर के पहुंचे राजेश खन्ना के पास, तो उन्हें लगा था कि शायद काका मना कर दें, क्योंकि तब काका इमोशनल रोल्स तो कर रहे थे, लेकिन उनको साथ में अच्छा दिखना बहुत पसंद था, गुड लुक्स। सो राजेश खन्ना अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते थे। जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में वो बावर्ची का रोल प्ले करेंगे और उन्हें एक बावर्ची जैसे कपड़े पहनने हैं, तो उन्होंने हामी भर दी। ऋषिकेश दा को बड़ा अचंभा हुआ। फिर राजेश खन्ना ने एक बात कही कि उनके सर से बावर्ची की टोपी, अगर आप देखो ना, एक पॉइंटेड सी टोपी पहने वो, जिसे उन्होंने एक सेकेंड के लिए भी फिल्म में नहीं उतारा। सो काका ने कहा कि इस पूरी फिल्म में वो ये टोपी पहने रहेंगे। तो ऋषिकेश दा ने आंखें छोटी करते हुए उनको शक की निगाहों से देखते हुए पूछा कि राजेश, तुम ये टोपी कॉस्ट्यूम के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई और रीजन है? काका ने मुस्कुरा के पता है क्या कहा? कि उनके बाल कम हो रहे हैं और टोपी की वजह से वो छिप जाएंगे। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, और भी बातें बताऊंगी ना, वापस तो आओ।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश दाना बंगाली फिल्मों से बहुत इंस्पायर होते थे, बहुत इम्प्रेस होते थे और इसीलिए उनकी कई सारी फिल्में बंगाली फिल्म से ही इंस्पायर थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। बावर्ची की बात हो रही है। ऋषिकेश दा ने बनाई थी, राजेश खन्ना और जया बच्चन थी विद अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स। ए के हंगल थे, असरानी साहब थे, दुर्गा खोटे थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बावर्ची भी एक बंगाली फिल्म से इंस्पायर्ड थी और इसका नाम था गोल्पो होलियो सोटी। ये फिल्म तपन सिन्हा ने बनाई थी। बनी तो ये 1966 में थी, लेकिन जब ये ऋषिकेश मुखर्जी ने देखी थी उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ हिंदी में बनाएंगे। पुरानी जीन्स पर आज इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी, तो श्रेया के साथ वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतूराज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है, क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने, वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: जीन्स पर आप हो श्रेया के साथ। मेरा जाने का टाइम तो हो गया है, पर आपको पता है ना मैं अकेले नहीं जाती हूँ। इस समय एक गाना चूज करके मैं और आप मिल करके हाईवे तक घूम के आते हैं। तो चलो गाड़ी में जल्दी से बैठो। तो आज का मेरा हाईवे हिट पहली मुलाकात पे, एंड स्पेशली जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलने वाले होते हो ना, तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना कि क्या बातें होंगी, वो मुझसे क्या कहेगा, मैं उससे क्या पूछूंगी, आगे कॉन्वर्सेशन कैसे बढ़ाएंगे, अच्छा हम कैसे लग रहे होंगे एक दूसरे को, ये सब सवाल होते हैं ना। तो आज उसी एक्साइटमेंट पे
1: आज उनसे पहली मुलाकात होगी।
0: यही गाना सुनते हुए चलते हैं। On that note, this is Shreya signing off. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक और इंस्टा पे, RJ Shreya with love. ये है मेरा हैंडल, that's RJ SHREYA Shreya with love.

0: भैया मेरे हिसाब से तो ये बॉडी पॉजिटिविटी नहीं है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हूँ आप, एंड आई एम श्योर आपको धमाल 4 के बारे में तो पता होगा। कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी ये फिल्म, एंड उसमें एक किरदार है अंजलि आनंद ने जिस किरदार को प्ले किया है। जैसा कि हम जानते हैं, या अगर नहीं पता हो तो बता दूं, अंजलि आनंद जो है वो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर एक फ्लैग बेरर मानी जाती है। बट धमाल 4 में जो किरदार उन्होंने निभाया है उसकी वजह से उनको काफी सारे बैकलैश भी मिले हैं, जिसपे शी एड्रेस्ड बॉडी शेमिंग डिबेट्स, एंड उन्होंने कहा कि उनकी डेफिनेशन उनका अपियरेंस नहीं है और वो अपने काम को इस चीज से कभी भी ओवरशैडो नहीं होने देती। बट अंजलि, मैं जिस पर्सपेक्टिव से आपकी इस फिल्म को देख के आई हूँ, मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग प्लस साइज में आते हैं, एंड दे वर लेजिट ऑफेंडेड बाय द रिमार्क्स जो इस फिल्म में आपके ऊपर किए गए थे। वो सीन में आपके एंट्री पे हाथी की आवाज हो या अदर बॉडी शेमिंग जोक्स जो आपके ऊपर मारे गए हैं इन द मूवी, सो आई एम सॉरी, दिस फॉर मी इज नॉट बॉडी पॉजिटिविटी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और आप इस चीज पे क्या राय रखते हैं वो मुझे जरूर बताइएगा मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Gabana. Burga, burga. La virpa la burga.
1: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
3: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
3: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
3: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
3: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में है क्या
3: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
3: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
3: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
3: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पर परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
3: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा
3: मैं देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल पता नहीं
3: कहाँ कहाँ से आ जाए मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
2: क्यों आराम कर दिया तुम
3: जीना बता रहा हूँ भाग यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
3: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। द रेलवे मैन के बाद YRF एंटरटेनमेंट एक और टनल रेस्क्यू मूवी लेकर आ रही है, सॉरी नॉट मूवी बट अ सीरीज नाम होने वाला है इसका, टनल मैन, बेस्ड ऑन 2023 का टनल रेस्क्यू जो हुआ था उत्तराखंड में। एंड इसी सीरीज के साथ YRF एंटरटेनमेंट इज सेट टू फर्दर एक्सपैंड इट्स लाइनअप ऑफ स्टोरीज जो रियल लाइफ हीरोज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट से इंस्पायर्ड है। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। अल्लू अर्जुन की रागा शायद से दो हिस्सों में आएगी। हां जी, धुरंधर इफेक्ट हर जगह चल रहा है। वैसे 800 करोड़ रुपए के बजट पे बना रहे हैं अटली कुमार अपनी ये फिल्म, जिसमें अल्लू अर्जुन के अलावा दीपिका पाडुकोण, मृणाल ठाकुर, रश्मिका मंदाना और जानवी कपूर भी नजर आएंगी। एंड बिकॉज द फिल्म हैज एन एक्सपेंसिव स्टोरी लाइन, इसीलिए मेकर्स ये सोच रहे हैं कि इसको दो हिस्सों में रिलीज करें। ऑल्दो अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, बट जैसे ही पता चलेगा आपको जरूर बताऊंगी। आमिर खान की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म ललकारा के लिए विक्रांत मसी को अप्रोच किया गया है। द फिल्म इज एक्सपेक्टेड टू गो ऑन फ्लोर्स लेटर दिस ईयर, जिस पीरियड ड्रामा के लिए विक्रांत मसी को एक जूसी रोल ऑफर हुआ है। बाकी विक्रांत की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं, सरजी जो हैं वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के अवतार में नजर आएंगे इन दिस इंटरनेशनल फ्लिक, जिसके बारे में डीट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स ऑन।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Yeah. Meaty Mitchie, brighten up your day, we will find a way. On Meaty Mitchie, aha. खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अरे मैं तो मिर्ची फिल्मची गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर कहाँ ही दौड़े, लगाम लगाइए। बेसिकली द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। और आज सबसे पहले हमारे साथ बैंगलोर से टेलीफोन लाइन पे जुड़ी है मयूरी जी। सो आर यू रेडी? ओके जी। रैप कल्चर पे बनी बॉलीवुड की पहली फिल्म कौन सी है?
3: गली बॉय।
0: बहुत बढ़िया। गली बॉय में अपने बॉयफ्रेंड से घुलू घुलू करने वाली को कौन धोपतूंगी है?
3: आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें उनको इंसोम्निया होता है?
3: आलिया भट्ट की फिल्म शानदार, आई थिंक।
0: बहुत बढ़िया। शानदार में वेडिंग प्लानर कौन है?
3: शाहिद कपूर।
0: शाहिद कपूर किडनैप्ड बच्चे को किस फिल्म में उसके घर पहुंचाने की कोशिश करते हैं?
3: चाइना टाउन
0: में शाहिद की इस काम में मदद कौन करता है?
3: करीना कपूर।
0: करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो पंछी नदियां पवन के झोंके की बात करते हैं?
3: रेफ्यूजी
0: के मेल लीड कौन है?
3: अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें वो डबल रोल का नाटक करते हैं?
3: बोल बच्चन।
0: हाँ जी, बोल बच्चन में झूठ किसको बर्दाश्त नहीं होता?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन किस फिल्म में एक केबल ऑपरेटर है?
3: दृश्यम।
0: बहुत बढ़िया, मुझे लगा था यहाँ अटकोगे आप।
3: टू मच।
0: दृश्यम में आईपीएस ऑफिसर कौन है?
3: तबू।
0: तबू को 64 साल के शेफ से किस फिल्म में प्यार होता है?
3: चीनी कम
0: में वो शेफ कौन है?
3: अमिताभ बच्चन।
0: अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें वो कहते हैं कह दिया, बस कह दिया?
3: केथ्री जी, कभी खुशी कभी गम।
0: केथ्री जी में अपने जूते के लेसेस कौन नहीं बांध पाता?
3: ऋतिक रोशन
0: ने किस फिल्म में एक इल्यूजनिस्ट और मैजिशियन का रोल प्ले किया है?
3: गुजारिश
0: में उनकी नर्स कौन है?
3: ऐश्वर्या राय
0: किस फिल्म में एक स्मॉल टाउन सिंगर होती है जो ओवरनाइट सेंसेशन बन जाती है?
3: फन्ने खान
0: उसमें वो स्मॉल टाउन सिंगर नहीं होती है, शी इज लाइक अ पॉप सेंसेशन इन दैट मूवी, राइट?
3: आई थिंक आई डोंट नो,
0: बट आई डेफिनेटली नो दैट यू आर आज की हमारी पहली
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई अगर इसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहते हैं देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर DM कीजिए। रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake, please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake, किसी से भी स्टोरी मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है, यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batlow, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: हर दूसरा गाना सुपर हिट, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो मिर्ची फिल्म ची गेम की बात कर रही हूँ, बाहुमोशा है, जिसकी शुरुआत आज मेरे साथ की बैंगलोर से मयूरी जी ने। और आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज शी गॉट स्टक एट अ पॉइंट, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ी हैं सूरत से निशा जी। सो आर यू रेडी टू कंटिन्यू द गेम मैम? ऑल द बेस्ट देन। माई क्वेश्चन वॉज, ऐश्वर्या राय किस फिल्म में एक स्मॉल टाउन सिंगर होती है जो ओवरनाइट सेंसेशन बन जाती है?
3: ताल।
0: ताल में मानसी से किसको प्यार होता है?
3: अक्षय खन्ना।
0: अक्षय खन्ना किस फिल्म में एक एरोगेंट एक्टर है जिसको ऑस्कर जीतने से ऑब्सेशन है?
3: तीसमार खान।
0: सो तीसमार खान में वॉनबी एक्ट्रेस कौन है?
3: कैटरीना कैफ।
0: वेरी गुड। कैटरीना कैफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर किस फिल्म में है?
3: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
0: ओके, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक का फोन कार से बाहर कौन फेंकता है?
3: फरहान अख्तर।
0: वेरी गुड। फरहान अख्तर किस फिल्म में खुद को ही कॉल करते हैं?
3: दीपिका पादुकोण।
0: यस,
3: कार्तिक कॉलिंग कार्तिक।
0: बहुत बढ़िया। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में उनको किससे प्यार होता है?
3: दीपिका पादुकोण।
0: दीपिका पादुकोण किस फिल्म में साउथ इंडियन डॉन की बेटी है जो अपनी शादी से भागती है?
3: चेन्नई एक्सप्रेस।
0: और आपने भी एकदम एक्सप्रेस मोड में ये गेम कम्प्लीट किया है। और इसी के साथ आप बनी है हमारी आज की दूसरी
1: मिर्ची फिल्म जी।
3: थैंक यू सो मच श्रुति, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू।
0: सेम यू।
3: आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नो द बॉलीवुड जस्ट गॉट यू नो इग्नाइटेड इन मी। आई एम फीलिंग सो गुड आंसरिंग दीज क्वेश्चंस
0: एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू गॉट दैट फीलिंग, क्योंकि यही है मोटिव मेरा कि हर इंसान के अंदर के फिल्मची को जगाना है। तो बाबू मोशाय, अगर फिलहाल आपके फिल्मची कीड़े को फोमो हो रहा है, देन वरी नॉट, ये गेम कल फिर हाजिर होगा। राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स ऑल।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello?
3: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच।

0: धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए तो दबाइए 7-7। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो,
0: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए, तो दबाइए 4,19,83,93।
2: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार, अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं, आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका
1: वही मैं सुधर रहा था, मतलब लगा।
0: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाएं 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी,
0: कुकड़ों को
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इसी को बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: देखिए बाबू मोशाय, अगर आपके पास एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ 20 मिनट हैं आपकी जिंदगी के, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट का जिम्मा मेरे ऊपर है। और मैं आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी पांच साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों की बात कर रही हूँ जो 20 मिनट के अंदर ही आपको मस्त एंटरटेनमेंट दे देंगी। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी कृति, जो 18 मिनट 51 सेकंड की मूवी है। अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट 10th रेस, जो 14 मिनट 48 सेकंड की मूवी है। रिलीज हुई थी 2011 में, डायरेक्टेड बाय गौरव मिश्रा, जिसमें राहुल बग्गा, नीरज शर्मा, उल्हास तैयद और पंकज त्रिपाठी लीड रोल्स में हैं। कहानी है चार मर्दों की जो साथ मिलके एक क्राइम कमिट करने वाले हैं। प्लान फ्लॉलेस है इनका, लेकिन जब सब कुछ एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर क्या होता है, यही देखने में तो मजा आएगा। आई रिपीट, द नेम ऑफ द फिल्म इज 10th रेस। मूविंग ऑन, नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म राह, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2015। ड्यूरेशन इस मूवी का है 14 मिनट 26 सेकंड और इसको डायरेक्ट किया था प्रतीक पयोधी ने। फिल्म के एक्टर्स हैं स्वर्णिम तेलांग एंड ऋषि वर्मा। बाकी अगर आपको गुड ओपन एंडिंग फिल्में पसंद हैं जो आपको कई दिनों तक हॉन्ट करें, तो दिस इज अ फिल्म टू गो फॉर, क्योंकि यहाँ दो स्ट्रेंजर्स एक कार राइड में हैं और दोनों अपने अपने डार्क सीक्रेट्स छुपा के बैठे हुए हैं। माइंड यू, वन ऑफ देम इज अ मर्डरर, जिसके बारे में आपको अंत अंत तक पता नहीं चलेगा। सो या, मेरी इस लिस्ट में और भी ऐसी ही दो फिल्मों की बातें बाकी है बाबू मोशाय, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। टिल द न्यू स्टेडियम टू मिर्ची, श्रुति आपके साथ।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: छोटी छोटी चीजें भी बड़ा मजा दे जाती हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एक्सक्यूज मी डर्टी माइंड, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं शॉर्ट फिल्म्स की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों की, जो 20 मिनट के अंदर ही आपको अलग लेवल का मजा दे जाएंगी। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी कृति, नंबर 2 पे हमने बात किया 10th रेस के बारे में, नंबर 3 पे वी टॉक्ड अबाउट राह, अब बारी है नंबर 4 पे टू टॉक अबाउट रश्क। ये मूवी रिलीज हुई थी इंडिया 2020, डायरेक्टेड बाय राजीव वालिया, जिसमें भुवन अरोड़ा, पूजा भामरा, पलक पुरस्वानी एंड श्रीश शर्मा लीड रोल्स में हैं। बाकी इस फिल्म को देखने के पहले प्रिपेयर फॉर अ सीरियस माइंड गेम, हाँ, क्योंकि ये फिल्म रिवॉल्व करती है अराउंड अ बिजनेसमैन जिसके ऊपर अपनी वाइफ को मारने का इल्जाम लगा है। वेल, एज ही नरेट्स हिज वर्जन ऑफ इवेंट्स, जो सच्चाई है उसमें काफी सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं। वेल, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे, लेट्स टॉक अबाउट द मूवी इलायची, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2015, डायरेक्टेड बाय देवशीष मखीजा, जिसमें विभा चिब्बर, निमृत कौर और दिव्येंदु शर्मा हैं। वेल, इमेजिन करो बीइंग स्टक विद समवन फॉरएवर एंड एवर। सो बेसिकली ये मूवी एक डार्कली कॉमिक येट चिलिंग टेल है ऑफ अ हस्बैंड जो अपनी वाइफ को अकेला छोड़ने से मना कर देता है, इवन आफ्टर डेथ, माइंड यू। बाकी फिल्म में निमृत कौर की फ्रस्ट्रेशन इज ऑल टू रियल एंड द एंडिंग, भाई साहब, अनफॉरगेटेबल एंड हॉन्टिंग। नहीं देखी फिल्म तो अपनी वॉच लिस्ट में इसको जरूर डालना। बाकी मेरे इस लिस्ट में और भी कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग शॉर्ट फिल्म ऐड करना चाहो, देन प्लीज डू दैट, MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना हिट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। द रेलवे मैन के बाद YRF एंटरटेनमेंट एक और टनल रेस्क्यू मूवी लेकर आ रही है। सॉरी, नॉट मूवी बट अ सीरीज नाम होने वाला है इसका, टनल मैन, बेस्ड ऑन 2023 का टनल रेस्क्यू जो हुआ था उत्तराखंड में। एंड इसी सीरीज के साथ YRF एंटरटेनमेंट इज सेट टू फर्दर एक्सपैंड इट्स लाइनअप ऑफ स्टोरीज जो रियल लाइफ हीरोज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स से इंस्पायर्ड हैं। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। अल्लू अर्जुन की रागा शायद से दो हिस्सों में आएगी। हां जी, धुरंधर इफेक्ट हर जगह चल रहा है। वैसे 800 करोड़ रुपए के बजट पे बना रहे हैं अटली कुमार अपनी ये फिल्म, जिसमें अल्लू अर्जुन के अलावा दीपिका पादुकोण, मृणाल ठाकुर, रश्मिका मंदाना और जानवी कपूर भी नजर आएंगी। एंड बिकॉज द फिल्म हैज एन एक्सपेंसिव स्टोरी लाइन, इसीलिए मेकर्स ये सोच रहे हैं कि इसको दो हिस्सों में रिलीज करें। ऑल्दो अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, बट जैसे ही पता चलेगा आपको जरूर बताऊंगी। आमिर खान की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म ललकारा के लिए विक्रांत मसी को अप्रोच किया गया है। द फिल्म इज एक्सपेक्टेड टू गो ऑन फ्लोर्स लेटर दिस ईयर, जिस पीरियड ड्रामा के लिए विक्रांत मसी को एक जूसी रोल ऑफर हुआ है। बाकी विक्रांत की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं, सरजी जो हैं वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के अवतार में नजर आएंगे इन दिस इंटरनेशनल फ्लिक, जिसके बारे में डीट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स ऑल।

शमशाद लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका वेंसडे की इस खूबसूरत शाम में। वैसे वेंसडे ना एक ऐसा दिन होता है जो यार ज़्यादा बोलता नहीं पर सब कुछ समझ जाता है। मतलब मंडे का ड्रामा भी ये देख चुका होता है, फ्राइडे के प्लान भी ये जान लेता है, बस बीच में बैठ कर ना हमारे सारे प्लान्स को जज कर रहा होता है कि अच्छा बड़े बड़े वादे किए तुमने वीकेंड के, चलो देखते हैं कर भी पाओगे या नहीं। वैसे आज का दिन ना थोड़ा कंपोज्ड, थोड़ा स्मग जरूर लगता है, तो यार समझ जाओ वेंसडे अपना काम कर रहा है। आप भी बताओ दोस्तों, आज आप थोड़ी कंपोज थे या कंपोज रहने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? क्योंकि मुझसे पूछो तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड नहीं थी, लेकिन जब कभी भी शाम को आपके लिए धमाकेदार गाना बजाने का मौका मिलता है तब यार ये पूरी कायनात सारा कंपोजर मेरे लिए लेकर आती है। तो चलिए वही करते हैं, आपके लिए बजाते हैं ये अगला धमाकेदार गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vedva la burga.
0: Milci, burga.
2: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं, वो बंदे राजस्थान से आने थे वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहा है ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाला चलाएगा?
3: हेलो हेलो।
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये है?
2: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
3: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
3: अच्छा भैया
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

बॉलीवुड की एक अच्छी बात यह है कि सिंगर्स का काम ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज भी एक अच्छी आवाज सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे रोमांटिक हो, सुकून भरी हो या थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव। आज के गाने लाउड होने से भी ज्यादा लास्टिंग होने पे फोकस कर रहे हैं और ऑनेस्टली ये फेज काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप भी बताना कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग में सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट करता है, लिरिक्स या वॉइस? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की गल करनी है
1: तेरे मेरे बारे
0: की।
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात होर सी।
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: अच्छा बाबा मान गई, बस कर अब।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: हर घर की समर की ना अपनी एक सिग्नेचर साउंड होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और गर्मी शुरू होते ही कुछ आवाजें रोज सुनाई देने लगती है, फैन फुल स्पीड पे, आइस ट्रे खुलने की आवाज, और फिर किचन से ब्लेंडर का चलना। बस उसके बाद सबको पता होता है कि कुछ ठंडा और मजेदार बनने वाला है। थोड़ी ही देर में ट्रे में आता है लंबा सा ग्लास, थिक क्रीमी मैंगो लस्सी से भरा हुआ, ऊपर हल्की सी मलाई, कभी थोड़े पिस्ता, कभी थोड़ी इलायची। और पहले सिप के बाद बस एक ही ख्याल है, काश ग्लास थोड़ा और बड़ा होता। और घर में अगर चार लोग हो ना तो ब्लेंडर एक बार नहीं, चार चार बार चलता है, क्योंकि हर कोई कहता है यार मेरे लिए भी बना दो, उसकी डिमांड तुरंत शुरू हो जाती है। और शायद इसीलिए मैंगो लस्सी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, समर का एक रिचुअल है। और उसी रिच आम का स्वाद लाया है दीप अल्फोंसो मैंगो पल्प। तो आज ही ले आइए अपने नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, अब गर्मी का मूड थोड़ा ठंडा हो चुका हो तो बॉलीवुड के सुरों के साथ शाम को भी रिफ्रेशिंग बनाते हैं, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आँखों ही आँखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, कोई खुस खुस खुस खुस, ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़, ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़, ओए आँखों ही आँखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, ओए खुस खुस खुस खुस खुस, ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़, ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़।

Radio Mitchie, New York. It's hot.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake किसी से भी स्टोरी मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

कुछ फिल्मों का नाम सुनते ही उनकी कहानी नहीं उनके एहसास याद आ जाते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज एक ऐसी मूवी की बात हो रही है, आवारापन। बॉलीवुड के उन फिल्म्स में से है जिसे वक्त के साथ लोगों ने और ज़्यादा प्यार दिया। डार्क इमोशन, सोलफुल म्यूजिक और वो इमरान हाशमी का एरा यार, जब हर फिल्म के गाने ना सीधा प्लेलिस्ट में परमानेंट जगह बना लेते थे, क्योंकि वो गाने सिर्फ हिट्स नहीं होते थे, वो लेट नाइट ड्राइव्स, हेडफोन्स और अपनी ही दुनिया का एक साउंड ट्रैक बन जाते थे। और अब जब अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये आवारापन सुनाई देता है ना, तो लगता है कि जैसे एक नई आवाज़ उन कहानियों को फिर से महसूस करने का मौका दे रही हो। क्योंकि कुछ मेलेडीज़ की खूबसूरती ही यही होती है कि जनरेशन्स बदल जाती है लेकिन इमोशंस वही रहती है। वैसे आप भी बताइए दोस्तों कि अगर मैं आवारापन बोलूँ तो सबसे पहले आपको उस फिल्म का कौन सा गाना या मोमेंट याद आता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए एक ऐसी आवाज़ जो पुरानी यादों को नए अंदाज में छू जाती है, अरिजीत सिंह की आवाज़ में सुनते हैं ये आवारापन, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

तेरे प्यार में चमको जैसे जुगनू। शाम शानदार, let's do non-donkey, have a funky time। लाइफ में ना एक दोस्त ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपकी आधी बात सुनकर ही बोल दे कि चलो निकल पड़ते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और ना ज्यादा रीजन पूछना, ना कोई कैलकुलेशन करना, बस साथ चल पड़ना। ऐसे ही वो दोस्त होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि दोस्तों में ना चलेबिलिटी देखनी चाहिए, क्योंकि यही वो दोस्ती होती है जिनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप भी उस स्पेशल दोस्त के साथ निकल पड़ना चाहते हो फ्रेंडशिप डे मनाने या यादगार बनाने के लिए, तो आपके लिए आ रहा है दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0, जहां होंगे लाइव बैंड, सोलफुल म्यूजिक, शायरी, डांस और एक डेलिशियस 3-course डिनर एक ही शाम में। इतने सारे मेमोरीज। डेट नोट डाउन कर लीजिए, August 7th शुक्रवार की शाम 7 बजे से लेकर रॉयल आल्बर्ट्स पैलेस में। और मिर्ची लिसनर्स के लिए तो एक अनोखा कॉन्टेस्ट, आपको बस आपके वो चलेबिलिटी वाले दोस्त के नाम पर टाइप करना है दोस्ती और उनके लिए एक प्यारा सा बॉलीवुड गाना डेडिकेट करना है। और हो सकता है अगले लकी विनर आप हो जिन्हें मिलेगा दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0 के टिकट्स। तो जल्दी से टाइप कीजिए दोस्ती और अपने दोस्त के लिए बॉलीवुड गाना डेडिकेट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और अगर इस इवेंट के टिकट्स बुक करने हैं तो आपको कॉल करना है ज्योत्सना शर्मा को 7329972409, या फिर आप sulekha.com पर जाकर भी दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0 के टिकट्स बुक कर सकते हो। और चलिए अब दोस्ती के नाम एक गाना जो हर जनरेशन के दोस्तों की प्लेलिस्ट में जरूर होना चाहिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga.
2: हेलो हाँ जी बोलिए
1: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
2: आप बोलिए ना
1: कॉल आपने किया आप बोलिए
2: कॉल मैंने किया हेलो
1: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
1: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
1: नींद में क्या
2: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
1: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
2: आ जाते हैं उनके मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी चले हेलो हाँ बताइए
1: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
1: हेलो
2: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
1: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
2: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए

0: चले चप्पल, पता ना
1: कहां पता ना कहां कहां से आ गए। मैच हो रहा है यहां पे, फोन को
0: जीना आराम कर दिया तुम जैसे
1: जीना उतार भाग यहां से भाग।
2: इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूं दांत तोड़ दूंगा। चप्पल मेरे हाथ में,
0: फोन आ रहा है, मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
3: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए। तो अभिषेक, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स पटा,
4: मिर्ची फ्रेश माल।
6: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: लाइफ में कोई भी चीज पहली बार करो ना तो थोड़ी सी ओवरवेलमिंग लगती ही है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और फिर चाहे वो पहली फ्लाइट हो, पहला जॉब इंटरव्यू हो, पहली कार खरीदना हो या फिर पहली बार अपने लिए घर खरीदना हो, यार इतने सारे

टर्म्स, पेपर वर्क, ऑप्शंस और डिसीजंस होते हैं ना, कि कभी कभी समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन जब सही गाइडेंस मिल जाए ना, तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी आसान लगने लगती है। और इसीलिए आज हम फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए लाए हैं कुछ एक्सपर्ट टिप्स बाय नन अदर देन मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने, वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

एक एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ इतने सारे गाने बनते हैं, कभी कोई हिट होते हैं, कभी कोई फ्लॉप, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसके सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक होते हैं, जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते और वो टाइमलेस रह जाते हैं। जी हाँ, 2007 की मूवी सलाम इश्क, वो एक ऐसा बॉलीवुड म्यूजिक का एल्बम था जिसके यार इतने अमेजिंग गाने थे। मतलब ये एल्बम नहीं था, ये तो थी एक म्यूजिकल थाली, क्योंकि 6 अलग कहानियां और उससे भी ज्यादा उनके अमेजिंग से जज्बात जो कि कैप्चर हुए थे हर एक गानों में। तो चलिए, इसी का एक गाना है सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। दोस्तों इसमें तो यार 6 जोड़ियां एक ही फ्रेम में दिख रही थी और लोगों ने कहा कि ये ना कहीं ना कहीं बॉलीवुड का एवेंजर्स मोमेंट था, क्योंकि वैसे तो एवेंजर मोमेंट 2008 में आया था, लेकिन बॉलीवुड ने बहुत ही पहले, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम इन 2007, इतने सारी जोड़ियां एक साथ, इतने सारे सिंगर्स एक साथ आए थे इस एक गाने के लिए, सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। वैसे तो यार सॉन्ग का स्केल और ग्रैंडियर देख के यही लगता था कि किसी अवार्ड शो के लिए ही ये गाना बनाया हो, क्योंकि शूटिंग के लिए भी इतना मैसिव सेट डिजाइन हुआ था और सारी जोड़ियों को एक ही दिन में सिंक प्रैक्टिस करनी थी। तो जी हाँ, सारे जो बॉलीवुड की जोड़ियां थी वो तो इस गाने में थी, लेकिन सारे जो म्यूजिकल सिंगर्स यानी सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और भी कई सारे सिंगर्स एक ही साथ इस गाने में थे, तो ये गाना तो एक शादी थीम बनना ही था। चलिए सुनते हैं सलाम इश्क टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सलाम इश्क। लेकिन आप भी बताइए वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका कोई भी गाना आप स्किप नहीं कर पाते। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक सलाम इश्क का ये टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है यार कि कभी कभी कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं कि जिसका कोई भी गाना मन ही नहीं करता कि हम स्किप करें। और वो जब ज़माना आता था ना कि जब कैसेट्स आती थी, तो एक ऐसी कैसेट उस एल्बम की बाय करना तो फुल ऑन पैसा वसूल लगता था। और ऐसा ही एक एल्बम था 2007 का, सलाम ए इश्क, जिसके यार हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग था। सलाम ए इश्क टाइटल ट्रैक के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन और एक गाना इस एल्बम का तेनु लेके, जो कि गाया गया है सोनू निगम एंड महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे तो यार इस गाने के लिए सलमान खान ने जो डांस किया था और उनकी जो एंट्री आई थी, वो एंट्री कई सारी शादियों का एंथम बन गया था। मतलब इतने सारे दुल्हों ने उसी गाने पर अपनी एंट्री की है कि यार बस तेनु मैं लेके जावांगा, ये एक शादी के लिए बहुत ही बेस थीम बन गया था। और ना सिर्फ शादी के लिए यार, मतलब प्रपोजल के लिए भी यही गाना यूज करते थे। जी हाँ, ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड ये चला, जब तक कि नए गाने नहीं आए। तो वन ऑफ द हिट सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम तेनु लेके मैं जावांगा, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने गाया हुआ ये गाना, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग। तो चलिए इसे प्ले करते हैं। लेकिन और भी एक गाना बाकी है इसी एल्बम का। वैसे आप भी मुझे अपने रिक्वेस्ट जल्द से जल्द भेज सकते हो, DM मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI, कि इस एल्बम का आपको कौन सा गाना पसंद है, जल्दी से बताइए। और तब तक के लिए तेनु लेके मैं जावांगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La vieva la murga. Mirci, murga.
2: Hello?
3: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुधरा था, मतलब।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

लाइफ में ना एक दोस्त ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपकी आधी बात सुनकर ही बोल दे कि चलो निकल पड़ते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और ना ज्यादा रीजन पूछना, ना कोई कैलकुलेशन करना, बस साथ चल पड़ना। ऐसे ही वो दोस्त होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि दोस्तों में ना चलेबिलिटी देखनी चाहिए, क्योंकि यही वो दोस्ती होती है जिनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप भी उस स्पेशल दोस्त के साथ निकल पड़ना चाहते हो फ्रेंडशिप डे मनाने या यादगार बनाने के लिए, तो आपके लिए आ रहा है दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0, जहां होंगे लाइव बैंड, सोलफुल म्यूजिक, शायरी, डांस और एक डेलिशियस 3-course dinner एक ही शाम में। इतने सारे मेमोरीज। डेट नोट डाउन कर लीजिए, August 7th शुक्रवार की शाम 7 बजे से लेकर रॉयल आल्बर्ट्स पैलेस में। और मिर्ची लिसनर्स के लिए तो एक अनोखा कॉन्टेस्ट, आपको बस आपके वो चलेबिलिटी वाले दोस्त के नाम पर टाइप करना है दोस्ती और उनके लिए एक प्यारा सा बॉलीवुड गाना डेडिकेट करना है। और हो सकता है अगले लकी विनर आप हो जिन्हें मिलेगा दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0 के टिकट्स। तो जल्दी से टाइप कीजिए दोस्ती और अपने दोस्त के लिए बॉलीवुड गाना डेडिकेट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और अगर इस इवेंट के टिकट्स बुक करने हैं तो आपको कॉल करना है ज्योत्सना शर्मा को 7329972409, 7329972409, या फिर आप sulekha.com पर जाकर भी दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0 के टिकट्स बुक कर सकते हो। और चलिए अब दोस्ती के नाम एक गाना जो हर जनरेशन के दोस्तों की प्लेलिस्ट में जरूर होना चाहिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: देखो ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची फ्रेश माल।
4: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे इतने सारे गाने जहां बनते हैं, कुछ फ्लॉप कुछ हिट, लेकिन यार कुछ ऐसे एल्बम्स बनते थे जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता था। और 2007 में रिलीज हुआ एक ऐसा एल्बम सलामी इश्क, जी हाँ, शंकर महादेवन के मैक्सिमम कंपोजिशन इस एल्बम के लिए थे। और हर एक गाना यार ब्लॉकबस्टर था, मतलब आप स्किप भी नहीं कर सकते, चाहे वो बाबू जी धीरे चलना का रिमिक्स वर्जन ही क्यों ना हो। तो यार इसी एल्बम का एक जो सॉन्ग है वो बहुत ही खास है, एंड दैट इज मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। वैसे तो यार इस गाने को जब फिल्माया गया था तो इतने सारे कपल्स हैं इस मूवी में, जॉन अब्राहम विद्या बालन हो, उनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही अमेजिंग थी, फिर चाहे हमारी प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान हो, लेकिन यार सबसे ज्यादा जो अमेजिंग केमिस्ट्री थी, जिसने लोगों का दिल जीत लिया था, दैट वॉज शैनन एसरा एंड गोविंदा की। मतलब ये गाना स्पेसिफिकली जिसमें शैनन एसरा ने बहुत सारे एथनिक कॉस्ट्यूम्स पहने थे और गोविंदा बीन गोविंदा अलग अलग जगहों पे डांस किए जा रहे थे, मतलब कहीं हवेलियों के सामने कहीं ट्रक पर, दिस सॉन्ग वॉज रियली रियली ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड। और गोविंदा के डांस मूव्स, मतलब दे वर किलिंग इट, दे वर टोटली किलिंग इट। तो वेरी वेरी क्यूट सॉन्ग, और बहुत ही क्यूट जोड़ी लग रही थी शैनन एसरा और गोविंदा की। वैसे यार ये गाना इतना ज़्यादा प्यारा है तो यू कैन लिसन टू इट एनी टाइम। तो अभी मैं आपके लिए बजाने वाली हूँ मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो इस एल्बम का आपका कौन सा फेवरेट गाना है, टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए सलाम इश्क का मेरा दिल, राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने। वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
5: हिट गाना।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। वैसे खूबसूरत शाम के खूबसूरत गाने तो बज ही रहे हैं, लेकिन यार एक ऐसा खूबसूरत एल्बम निकला था जिसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे। 2007 की रिलीज्ड सलाम इश्क की मूवी का जो गाना है, सॉरी जो एल्बम है, उसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे यार। शंकर एहसान लॉय ने इस एल्बम को कंपोज किया था और इसके काफ़ी सारे गानों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, लेकिन एक गाना है जो आपने रिक्वेस्ट किया है। जी हाँ, आदित्य पाटिल एडिसन में जो रहते हैं, उन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया इसी एल्बम का, एंड दैट इज दिल क्या करे संग बाय अदनान सामी। वैसे तो यार दोस्तों, सलाम इश्क का टाइटल ट्रैक तो अमेजिंग था ही, लेकिन उसी टाइटल ट्रैक का एक अलग वर्जन बनाया गया था दिल क्या करे इस गाने में, अदनान सामी की मैजिकल वॉइस में। और एक खास बात थी इस गाने की कि यार इस गाने का जो पूरा मूड है, पूरा रोमांटिक मूड है, यू नो पूरा रोमांस ओवरलोडेड है इस गाने में, लेकिन उस रोमांस के वाइब को रखने के लिए यानी सेटअप करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ना सिर्फ एक कैंडल जलाई थी ताकि एक नो अच्छा सा मूड सेट हो जाए और अदनान सामी एकदम हैप्पी लिए गाना गा पाए, एकदम अमेजिंग मूड में, शाम वाले मूड में। और ऐसा ही कुछ हुआ, बस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक कैंडल जलाई गई थी और उसी कैंडल की लाइट में अदनान सामी ने अपनी मैजिकल आवाज में ये गाना गाया। तो चलिए आदित्य के लिए बजाते हैं दिल क्या करे फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एल्बम्स सलाम इश्क 2007 की रिलीज। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई एल्बम पता है जिसके सारे के सारे गाने आपको पसंद है तो टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDH, क्योंकि बजाते हैं यार उस एल्बम के सारे गाने राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए
1: 7:30 बजे तक।
0: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई, हमारे जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं, वो बंदे राजस्थान से आने थे वो वहाँ पे रह गए हैं।
1: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
0: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
1: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
0: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
1: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
0: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए।
1: हेलो,
0: हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
1: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
0: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितनी चल रहे हैं सर?
1: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
0: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
1: हेलो हेलो,
0: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
1: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
0: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर?
1: अरे कॉफिन कर
2: विनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
1: अच्छा भैया
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट मिर्ची, फ्रेश माल,
4: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तबाही।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हर सीजन की अपनी एक पर्सनालिटी होती है और समर की पर्सनालिटी मुझे सबसे ज्यादा फिल्मी लगती है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और दिन लंबे होते हैं, शामें धीरे धीरे उतरती है और लगता ही नहीं कि घर जाने की कोई जल्दी है। पार्क्स में बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई आइसक्रीम लेकर वॉक कर रहा होता है, कोई यार लॉन चेयर निकाल कर बस हवा इंजॉय कर रहा होता है। और मुझे ना समर की सबसे प्यारी बात ही यही लगती है कि ये सीजन हमें घर से बाहर निकलने का बहाना दे ही देता है। कोई ग्रैंड प्लान की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस एक छोटी सी इवनिंग ड्राइव भी पूरे दिन का मूड चेंज कर देता है। तो आज अगर घर जाते वक्त थोड़ा लंबा रूट मिल जाए तो शायद शॉर्टकट लेने की जरूरत ही नहीं। और बताइए दोस्तों, समर की कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके बिना वो कंप्लीट ही नहीं लगता? आइसक्रीम, बारबेक्यू, लॉन्ग ड्राइव या सनसेट वॉक्स? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI, क्योंकि यार मेरा तो कोई भी सीजन एक प्यारे से गाने के बगैर कंप्लीट ही नहीं लगता। तो चलिए बजाते हैं वही गाना right here on Mirchi, it's hot।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

लाइफ में ना एक दोस्त ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपकी आधी बात सुनकर ही बोल दे कि चलो निकल पड़ते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और ना ज्यादा रीजन पूछना, ना कोई कैलकुलेशन करना, बस साथ चल पड़ना। ऐसे ही वो दोस्त होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि दोस्तों में ना चलेबिलिटी देखनी चाहिए, क्योंकि यही वो दोस्ती होती है जिनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप भी उस स्पेशल दोस्त के साथ निकल पड़ना चाहते हो फ्रेंडशिप डे मनाने या यादगार बनाने के लिए, तो आपके लिए आ रहा है दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0, जहां होंगे लाइव बैंड, सोलफुल म्यूजिक, शायरी, डांस और एक डेलिशियस 3-course dinner एक ही शाम में। इतने सारे मेमोरीज। डेट नोट डाउन कर लीजिए, August 7th शुक्रवार की शाम 7 बजे से लेकर रॉयल आल्बर्ट्स पैलेस में। और मिर्ची लिसनर्स के लिए तो एक अनोखा कॉन्टेस्ट, आपको बस आपके वो चलेबिलिटी वाले दोस्त के नाम पर टाइप करना है दोस्ती और उनके लिए एक प्यारा सा बॉलीवुड गाना डेडिकेट करना है। और हो सकता है अगले लकी विनर आप हो जिन्हें मिलेगा दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0 के टिकट्स। तो जल्दी से टाइप कीजिए दोस्ती और अपने दोस्त के लिए बॉलीवुड गाना डेडिकेट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और अगर इस इवेंट के टिकट्स बुक करने हैं तो आपको कॉल करना है ज्योत्सना शर्मा को 7329972409 7329972409, या फिर आप sulekha.com पर जाकर भी दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0 के टिकट्स बुक कर सकते हो। और चलिए अब दोस्ती के नाम एक गाना जो हर जनरेशन के दोस्तों की प्लेलिस्ट में जरूर होना चाहिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। and for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers, फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया एंड पीटर पार्कर यानी टॉम हॉलैंड, इन दिस फिल्म इट्स अ लिटिल डिफरेंट। इन फैक्ट आई कैन गो अहेड एंड टेल यू कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने। वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा एट @rjmirchisiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।